महफूज कर रहे हैं। बहरहाल वो बात जी, वो जी ये हम इस मुल्क में जमहूरियत अफोर्ड नहीं कर सकते, इस मुल्क में जी तरक्की तो बादशाह से भी होती है। ये जो मिडल ईस्ट में तरक्की हुई है ये बादशाहों की वजह से नहीं है, ये वहाँ से निकलने वाले तेल की वजह से है। वहाँ कोई ऐसा अजीमुशान उन्होंने कोई निज़ाम मुतारफ़ नहीं करवा दिया था जो मिडल ईस्ट की तरक्की का बायस बन रहा है। ये मिडल ईस्ट से निकलने वाला सोना जो है तेल, उसकी वजह से है जनाब ये तरक्की। ये तरक्की कोई फिक्री तरक्की नहीं है, ये मादी तरक्की है। सिर्फ जिन माशरों में इंसान के सोच पे पहरे बैठा दिए जाएं, वो ज़रा से टस से मस नहीं इधर से उधर से हो सके, वहाँ जो भी तरक्की आपको नज़र आ रही होती है वो सारी मसनूई होती है। लिहाजा ये बादशाहत को भी वो फिर अगली बात सोचें, वो जो मसव्वरे पाकिस्तान है लामा इकबाल, जो मुसलमानों को उम्मत मुसलमा को ये तंबीह कर रहे थे कि अपने बादशाहों से खबरदार और चौकन्ने रहना। एक इल्म नजूम का माहिर बता रही थी तरक्की तो बादशाहतों में भी हो जाती है। लिहाजा वो लामा इकबाल की सोच और फिक्र पे लकीर फेर रही है एक माहिर इल्म नजूम जिसका कोई सियासी फहम नहीं होगा। अब आखिरी बात जो सबसे बड़ी है, ख़तरनाक है इसमें, जो उन्होंने कही है जी कि अल्लाह के हुक्म से इस मुल्क में सिस्टम तब्दील होना है और इसी ने मुल्क को बदलना है। अब देखें अपने जो मजमूम मज़ाइम हैं उनको मज़हब का लबादा ओढ़ा जा रहा है। यानी अगर वो सब कुछ हो गया तो जनाब वो हम नहीं कर रही, ये तो अल्लाह की तरफ से हो रहा सब कुछ। यानी अगर किसी के जहन में कोई सवाल कोई एतराज़ उठे भी तो क्योंकि हमारा माशा इंतहाई मजहबी है, उसे ये कहकर चुप करा दिया जाए ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो अगर तुम एतराज़ उठा रहे हो तो दरअसल तुम हमारे कामों पे नहीं, तुम अल्लाह की मर्ज़ी पे एतराज़ उठा रहे हो। ये आखिरी वाला नुक्ता सबसे ख़तरनाक है जनाब। तो ये एक माहिर इल्म नजूम कह रही है, तो वो जो मैंने लामा का एक शेर आपको सुनाया, शाह क्या सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फराखी अफलाक में है ख़वार व ज़बूं। तो फिर अल्लामा इकबाल इन्हीं सितारा जो इल्म नजूम के माहिर है, यही जो सितारों के हरकात व सकनात से इंसानों की दुनिया के मामलात का हल निकालते हैं। तो लामा इकबाल ने फिर एक और जगह कहा था कि तेरे मकाम को अंजम शुनास किया जाने, इंसान से कह रहे हैं कि तेरे मकाम को अंजम शनास किया जाने कि खाके जिंदा है तू ताबाए सितारा नहीं, कि खाके जिंदा है तू ताबाए सितारा नहीं, कि तू ताबे नहीं है सितारों के, तू तो जिंदा। एक और नुक्ते पे गौर कीजिए, जिंदा इंसान की निशानी ये होती है कि वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो अपने इख्तियार से अपने इरादे से अपने अमाल का इंतहाब करता है कि मैंने ये काम करना है या मैंने ये काम नहीं करना। तो अगर आपको ये आज़ादी हासिल नहीं है तो फिर आप जिंदा नहीं हैं जनाब, क्योंकि किसकी मर्जी और इरादा नहीं होता, मुर्दा इंसान की कोई मर्जी और इरादा नहीं होता जनाब। वो मैयत पड़ी है, उठा के जो करना है कर लो, दफनाना है दफना दो, नजरे आतिश करना है तो मैयत को चिता में जला दो, कुछ भी कर लो। मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अब आपके चार बंदों के कंधों पर हूँ। इसमें आपने दूसरा नुक्ता समझा कि अगर आप अपनी जिंदगियों के फैसले सितारों की मूवमेंट से कर रहे हैं तो फिर आप जिंदा नहीं है जनाब, वो सितारे जो मर्जी के मालिक ही नहीं हैं, खलाओं में खज्जल ख्वार हो रहे हैं, आप उनसे अपने लिए गाइडेंस मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा आपके लिए कोई पस्ती का मकाम हो सकता है कि आप बा इरादा बा इख्तियार और रहनुमाई किन से हासिल

0: कार्य जिनका कोई इरादा इख्तियार नहीं। उलामा ने फिर एक वो और जगह कहा था ना, तकदीर के हैं पाबंद नबातात और जमादात, मोमिन फकत अहकाम अल्लाह का है पाबंद। ये जो कायनात में ये नबातात और जमादात है ना, ये एक ख़ास प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं और ये उससे रूगर्दानी नहीं कर सकते। लेकिन इंसान को ये इख्तियार की दिया गया है मोमिन कि तू जो रास्ता इख्तियार करना चाहता है कर ले। लेकिन इंसान की इस आज़ादी में जबर का सिर्फ एक पहलू है। जबर का पहलू ये है कि वो अपने अमाल के चुनाव में तो आज़ाद है, लेकिन अपने अमाल के नतीजे अपनी मर्ज़ी से मरतब नहीं कर सकता। मसलन आप इस बात में तो आज़ाद हैं कि आपके सामने जहर पड़ा है और दूध का गिलास पड़ा है, तो आप उठा के जहर को मुंह से लगा लें या दूध पी लें। तो आपने जहर उठा लिया तो इसका नतीजा अब आप नहीं बदल सकोगे, इसका नतीजा लाजमी मौत की सूरत में निकलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से पिए तो जहर, नतीजा दूध का निकले। ये जबर है इंसान। आज़ादी ये है कि आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं, अपने अमाल का चुनाव खुद कर सकते हैं, लेकिन उनके नतायज अपनी मर्जी के नहीं निकाल सकते। ये है इंसान जनाब। लेकिन फिर ये सोचें, जब हमारे दीन की तालीमात इतनी आला और अरफा हैं और इंसान को बार बार ये यकीन दिलाया जा रहा है कि नहीं, हमने तुम्हें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पैदा किए, तो फिर वो इस तरह क्यों बन जाता है? तो इसका जवाब है जी, वो लामा फिर कहते हैं, तन ब तकदीर है आज उनके अमल का अंदाज़ थी नहां, जिनके इरादों में खुदा की तकदीर था जो ना खूब वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। अब आपको समझ आई कि वो मुसलमान जो अपने इरादों से अपने अजायम से दुनिया को उलट पुलट कर रख देते थे, आज उनकी हालत ये है, और जिनके इरादे और खुदा के इरादे एक से हुआ करते थे, खुदा की मर्ज़ी खुदा की तकदीर उनके कामों से झलकती थी। आज उनका क्या हाल हो गया है? वो जो चीज़ खूब हुआ करती थी कि उनके इरादे और खुदा की तकदीर एक होती थी, अब वो ना खूब कुछ इस तरह हो गए हैं कि अब उन्होंने अपनी नाकामियों को, अपने फेलियर्स को, अपनी बदमालियों के नताइज को तकदीर का नाम देना शुरू कर दिया, और वो अल्लाह के से जोड़ देते हैं जी, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। यानी वो जो अमाल और उनके नताइज पे यकीन रखते थे कि हम ये अमल करेंगे और ये नतीजा हासिल करके रहेंगे, अब उनकी हालत ये हो गई है कि उनके जो भी उनकी ज़िंदगियों के हालात हैं वो उसे भी अल्लाह की मर्ज़ी करार देते हैं कि हमारे साथ ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी शामत अमाल नहीं है, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। वही शैतान वाला काम, इब्लीस वाला, अल्लाह ताला को कि तेरी मर्ज़ी में नहीं था मैं सजदा करता, अगर तेरी मर्ज़ी में होता तो मैंने सजदा कर देना था। जी शैतान ने अल्लाह ताला के सर पे थोप दी, अपनी गलती नहीं मानी। तो फिर वो कह रहे कि ये गुलामी में होता है इस तरह, तो अब आप कहेंगे जनाब हम कैसे गुलाम हो गए, हम तो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत पाकिस्तान के बासी हैं, कौन कहता है हम गुलाम हैं? एकदम हमारी रगे गैरत फड़क उठेगी। तो जनाब, गुलामी ये नहीं होती कि कोई गैर ही आप पे हुक्मरान हो, कोई सफ़ेद चमड़ी वाले आप पे हुक्मरान हो तो आप गुलाम हैं। आप अपने हम वतन और हम कौम हुक्मरानों के भी गुलाम हो जाते हैं, और उस गुलामी की निशानियां क्या होती हैं? अगर किसी माशरे में किसी के ज़ेर इक्तदार आपको सोचने की इजाज़त नहीं, आपको सवाल करने की इजाज़त नहीं, तो आप ख़ुद मुख्तार नहीं कहला सकते। अगर आपकी सोच को, आपके सवाल को वतन दुश्मनी का लबादा पहना दिया जाता है, तो आप एकदम चुकन्ने हो जाएं कि आप ऐसे लोगों की रियाया हैं जो आपको अपना महकूम और मोहताज रखना चाहते हैं। तो ये वो जो लामा ने कहा ना कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर, तो जब आप एक तवील अरसे तक इस तरह की कैफियत में मुब्तला रहते हैं ना, जहाँ आपको जबर के तहत ज़िंदगी गुजारना पड़े, तो आस्ता आस्ता आप अब ये तो नहीं कहते कि ये हालात इसलिए नहीं बदल रहे कि हम कोशिश नहीं कर रहे, हम जुर्रत नहीं कर रहे। आप कहने लग जाते हैं कि ये हमारी तकदीर है, ये अल्लाह की तरफ से हमारी आजमाइश है। तो अल्लाह की तरफ से भी अगर ये आजमाइश है, अगर वो हमारा टेस्ट है, तो उस आजमाइश से हम बाहर किस तरह निकलेंगे? उसके लिए वो अल्लाह ताला ने हमें जो इरादा और मर्जी दी हुई है, वो अल्लामा इकबाल फिर अब से है शिकवाए तकदीर यजदा, ये हमारे अमूमी रवैयों की तरफ इशारा है कि आप कहो अल्लाह की तकदीर, अल्लाह की मर्जी यही है। उन्होंने कहा ना, ये शिकवे गिले मत करो, अल्लाह के माथे मत, अल्लाह की झोली में मत डालो, अल्लाह के दामन को दावेदार मत करो। अब से है शिकवाए तकदीर यजदा, तो खुद तकदीर यजदा क्यों नहीं है? तो अगर अल्लाह की तकदीर अल्लाह के कानून की वजह से तेरी जिंदगी में, तेरे अमाल की वजह से एक मुश्किल एक मुसीबत आ रही है, तो फिर फौरन जान के इस मुश्किल और मुसीबत से निकलने के लिए अल्लाह ने कोई राह भी बनाई होगी। वो अल्लाह का दूसरा कानून है, दूसरी तकदीर है, तो मैं उससे रुजू कर लेता हूँ तो मैं इस मुश्किल से निकल जाऊँगा। ये है इस शेर का मतलब। तो खुद तकदीर यजदा क्यों नहीं है कि अगर अल्लाह कि एक तकदीर ये है कि तुम्हारे गलत अमाल की वजह से तुम आजमाइशों में मुसीबतों में पड़ जाओगे, तो अल्लाह की दूसरी तकदीर ये है कि तू उन गलत अमाल को तर्क कर दे और सही अमाल इख्तियार कर ले, तेरी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। लेकिन जनाब वही बात कि अगर आप सोचेंगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे, या फिर आपको इसकी इजाज़त नहीं है, तो आप ये नुक्ता समझ लें कि आप आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं हैं। अगर आपने किसी भी महफिल में अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को टेस्ट करना हो, तो सवाल करके देखें। अगर तो आप सवाल करने की जुर्रत नहीं रखते, तो जनाब यकीन करें आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप नाफक हैं। समझ ये रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, जबकि अंदर से आपको पता है कि मुझे इतनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी नहीं, मैं सवाल कर सकूँ तो मैं कहाँ का आज़ाद, कहाँ का ख़ुद मुख्तार। तो इस 79th योम आज़ादी के मौके पर इस पैगाम को पल्ले बांधे। आपने जब कभी कहीं अपनी आज़ादी को टेस्ट करना है कि मैं कितना आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हूँ, तो आप ये अमल करके देखिएगा। आपके सामने अगर कोई सूरत हाल है, उस पर सोचें और सवाल उठाएं, और फिर देखें कि उसके जवाब में रद्द अमल क्या आता है। क्या आपको शटअप कॉल दी जाती है? तो अगर आपको जो शख्स शटअप कॉल दे रहा है, वो आपकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को महदूद कर रहा है जनाब, और फिर वो जो कोई भी है, सबसे पहले आपको जद्दोजहद उसके ख़िलाफ़ करनी होगी। और जिस दिन आप ये करके कामयाब हो जाएंगे, फिर आप हकीकी मानों में आज़ाद हो जाएंगे। वरना जुग्राफियाई हदूद रखते हुए भी एक मुल्क की सूरत में अगर आप अपने फ़ैसलों में आज़ाद नहीं हैं, तो आप ख़ुद मुख्तार और आज़ाद होने का दावा नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, और इसके बाद जो हम अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे, वो भी इससे रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा हट के। यकीन करें वो है तो वो थ्योरी जो है उसको डिस्कस, तो कारोबारी और जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उनकी तरक्की और वो किस तरह मजीद डेवलप से डेवलप होती चली जाती हैं उसके मतलब है। लेकिन अगर आप उनमें बयान किए गए असूलों को इंसान और कौमों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पे उनका इतलाक करेंगे, तो यकीन करें वो पढ़ते हुए मेरे जहन में अपनी सारी सूरत हाल आ रही थी, पाकिस्तान की, पाकिस्तान की आवाम की। तो उसको آخر پہ میں تھوڑا سا وائنڈ اپ ضرور کروں گا، لیکن اگر یقین کریں آپ ان باتوں پہ ذہن لڑائیں گے، آپ کی ذہانت اور یہی ہے کہ آپ ایک بات سنیں تو اس بات کو آپ مختلف صورتحال پہ ان کو امپلیمنٹ کریں، ان کا اطلاق کریں اور دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. حالاں ہمیں اسکولوں میں کبھی یہ باتیں سائنس میں سکھائی بھی جاتی ہیں، مثلا کوئی قانون پڑھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے مثالوں سے واضح کریں، تو بدقسمتی سے ہم وہ رٹے ہی لگائے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں وہ اصول ہم کبھی نہیں سیکھتے کہ یہاں سے نکل کے ابھی ہم نے یہ، اگر ہم مثلا آپ کہہ دیں کہ ہم آزاد ہیں، میں آپ کو سوال دے دیا جائے کہ ہم آزاد ہیں مثالوں سے واضح کریں، یہ آزاد ہیں تو کس طرح آزاد ہیں، تو دیکھیے آپ کی سوچیں کہاں سے کہاں جائیں گی. تو یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اس کی طرف اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں.
1: آپ اور ہم وطن ایک سنگ، نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84، ای میل ریڈیو سنائپلائے ہم

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, आप बाशी कुरैशी का एक ख़ास प्रोग्राम बाशी कॉर्नर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आज हम दो हफ्ते के बाद की छुट्टियों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमें उम्मीद है कि आपने हमें मिस किया होगा, हमने आप लोगों को बहुत मिस किया, रज़ा भाई ने बहुत मिस किया आपको। लेकिन आज के स्पेशल प्रोग्राम एक ख़ास प्रोग्राम है जिसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और ये प्रोग्राम इंग्लिश में होगा क्योंकि हमारे गेस्ट जो हैं उनको उर्दू नहीं आती, तो हम बेहतर ये है कि हम इंग्लिश में बात करें। डियर ऑडियंस, एज यू नो दैट इन द वेस्टर्न कंट्रीज पीपल ऑफन टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड मैनी वेस्टर्न कंट्रीज।

0: And I look very much forward to take up this very important topic of yoga and look into why it is misunderstood and look into the more profound aspects of the yoga practice.
1: I mean, I'm not very much into yoga, but I do certain exercises in my age to keep fit, and it helps. It does help, you know. Thank you very much for coming, Tom Jonathan.
0: Thank you.
1: सो सामेन नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जोनाथन के साथ, जिसमें हमने इंसानी हकूक, इस्लामोफोबिया, योगा, मेडिटेशन और दूसरी बातों पे इनसे बात की है। लेकिन जैसे मैंने जोनाथन से भी कहा कि योगा मेडिटेशन के बारे में लोग ये समझते हैं कि ये हिंदुओं की तरफ से आया है, हालांकि ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट है। तो इस पे बात करने के लिए हम जोनाथन को आने वाले चंद हफ्तों के बाद फिर दोबारा जो है दावत देंगे। तो अब मेरा प्रोग्राम थोड़ी देर के बाद नसर मलिक साहब के साथ शुरू होगा, तो उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984, ईमेल radio@hamwatan.org।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामईन और नाजरीन, रेडियो हमवतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ता रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमाती नौयत के होंगे और इन सब मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब नसर मलिक साहब भी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम नसर मलिक साहब की तरफ रजू करें, चंद एक छोटी छोटी मालूमाती ख़बरें हम अब तक पहुँचा देते हैं और उसके बाद हम जो है सियासी ख़बरों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि हम मौसम सरमा गर्मा की छुट्टियों पर गए हुए थे तो दो हफ्तों से प्रोग्राम नहीं हुआ, तो हम अपने सारे ऑडियंस को सामरीन नाजरीन को वेलकम करते हैं डेनमार्क और इंटरनेशनली। और हमें ये उम्मीद है कि आपने अपनी फैमिली के साथ मिलके अच्छी छुट्टी गुजारी होंगी और ये छुट्टियां जो हैं ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। जैसे आप जानते हैं जुमे के दिन पाकिस्तान ने अपनी 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया, पूरी दुनिया में मनाया गया और डेनमार्क में भी मनाया गया। और इसमें मैं एक चीज़ वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मैंने इंटरनेट पे बहुत पढ़ा है जिसमें काफ़ी लोग पाकिस्तान में भी और गैर ममालिक में भी पाकिस्तानी जो हैं वो अब पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के आइडिया पे जो है उन्होंने तनकीद शुरू कर दी है। तनकीद करना अच्छी बात है लेकिन मैं समझता हूँ कि गड़े मुर्दे उखाड़ना जो है ख़ास तौर पे एक अपने वतन की के ऊपर तनकीद करना ये मुनासिब नहीं समझता। और यहाँ तक अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बनाया गया है, जबकि हकीकत यह है कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो हकूक हैं उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था। खैर ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर कभी दोबारा हम बात करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम जब अपने वतन की के लिए बात करें तो उसमें हमें थोड़ा बहुत इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि तनकीद सियासतदानों पे करें लेकिन मुल्क में तनकीद जो है वो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है। पाकिस्तान एम्बेसी में और उसके अलावा दूसरी कुछ एनजीओस ने जो है मिलके पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाया और लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती रजा भाई कि पाकिस्तान एम्बेसी ने जो इनविटेशन भेजी है जो मुझे भी मिली आपको भी मिली होगी उसमें लिखा हुआ था कि आप अपना आईडी कार्ड लेके आएँ साथ में। मैं नहीं गया इसी प्रोटेस्ट की वजह से कि भाई जब हम अपनी एम्बेसी में जाते हैं और एम्बेसी वाले आपको जानते हैं पर्सनली तो फिर आप से आईडी कार्ड मांगना मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तानियों की जो है खेलिए जो ये बायस शर्म है मैं समझता हूँ।
3: जी बाशी साहब, मैं ख़ुद भी नहीं जा सका, काम पे था क्योंकि छुट्टियां थी काम से, फिर काम पे वापस जाना फिर आप छुट्टी लें तो वो मुनासिब नहीं लगता, तो इसलिए मैं नहीं जा सका, वर्किंग डेज था। लेकिन बाशी साहब आपने जिस चीज़ की निशानदेही की, मैंने पाकिस्तान एम्बेसी की फेसबुक साइट पे जाके ये लिखा था।
2: अच्छा।
3: कि ये पहले तो इस तरह कभी नहीं होता था कि हमें जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो आपको दिखा के तो अंदर आना था। फिर एक तरफ आप कहते हैं कि जी सभी जो हैं वो वेलकम है, डेनिश भी, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी, जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन फिर आप जो है वो आईडी कार्ड जो है वो देखना चाहते हैं, इस चीज़ की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। तो भाई साहब, लेकिन जो पहली आपने बात की कि नेट पे जो है वो बहुत से लोग तबसरे कर रहे हैं पाकिस्तान की ये यौम आज़ादी के हवाले से, तो मैं खुद जो है वो ये समझता हूँ कि हम लोग जो है काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हैं। एक तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था बेशक, यानी उस पर तो ये वो हम दिन मनाते हैं, लेकिन उसको साथ में पॉलिटिकल और जो आपकी वहाँ पे जो सलूक पाकिस्तान की आवाम से किया जा रहा है, फिर उस पर सवाल आता है कि क्या हमने इसलिए आज़ादी ली थी। तो भाई साहब बिल्कुल जो वो सवाल है वो तो बिल्कुल ठीक है कि हम आज़ाद हुए थे इंडिया से, हमने आज़ादी ली थी कि हम अपना मज़हब अपना जो दीन है हमारा हम जिस तरीके से रहना चाहते हैं उस तरीके से आज़ादी से जो है।
2: लेकिन देखिए रजा, आप और काफ़ी लोग इस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं दोबारा। ये सिर्फ दीन को बचाने के लिए नहीं किया गया था, ये हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं
3: मुसलमान वही है ना।
2: नहीं नहीं, मेरी बात करें, उनके सियासी हकूक, माशरती हकूक, तालीम की कमी और इतने जो ह्यूमन राइट हैं उसकी हिफाजत के लिए।
3: यही जो आप कह रहे हैं मैं भी उसी को जो है वो सेकंड कर रहा हूँ कि हम जो है वो उन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। पाकिस्तान में जिन हकूक की आप बात कर रहे हैं आज भी हमारे पास नहीं है, हमारे सियासतदानों ने हमारे जर्नलों ने हमसे वो हकूक जो है हमारे।
2: लेकिन देखिए मैं जो ये कहना चाहता हूँ और अभी थोड़ी देर के बाद नसर साहब से भी बात करेंगे इस पर, देखिए मुल्क का बनना और मुल्क की हिफाजत एक अलग मसला है।
3: बिल्कुल ठीक है।
2: और जो पाकिस्तान एज ए कंट्री जब कोई जो कदम लेता है उसको आप क्रिटिसाइज करते हैं। अभी अभी जो मिडिल ईस्ट में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया अब उस पर भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं, देखो जी मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, मुल्क के बाहर क्या हो रहा है। मुल्क के जो अंदर हो रहा है उस पर क्रिटिसाइज करें, आप उस पर तनकीद करें, उसके लिए स्ट्रगल करें, उसके लिए कोशिश करें, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसको यह कहना जी हमने पाकिस्तान के, तुमने तो पाकिस्तान ही बनाया, पाकिस्तान तो जो है 1947 से पहले की जो मूवमेंट थे उन्होंने बनाया।
3: एग्जैक्टली exactly. ना तो उसमें हमारी आर्मी थी बनाने में,
2: बिल्कुल
3: ना हम लोग थे, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी जो माएँ बहनें थी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं,
2: एग्जैक्टली
3: साहब ये उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और आज भी जब हम पाकिस्तान का दिन मनाते हैं तो जी पाक आर्मी जिंदाबाद और ये वो, देखिए आर्मी तो उसमें थी नहीं, तो उसको फजूल में हमने जो है पता नहीं कहां से घुसेड़ लिया अपनी 14 अगस्त की मूवमेंट में।
2: चलिए
3: जी,
2: चलिए ये ठीक है, हम ये जो बात कर रहे हैं इसको हम कभी कभी डिटेल से भी बात करेंगे। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर आपने एक डेमोंस्ट्रेशन की थी सैटरडे के दिन, उसका क्या मकसद था उस दिमाग
3: जी? बादशाह साहब पहले मैं बता दूं कि मैंने नहीं की थी ना ही करवाई थी।
2: नहीं, आप भी
3: मैं एज ए मीडिया वहां पे जो है उसको कवरेज करने गए थे।
2: वो किस लिए थी डिमॉन्स्ट्रेशन?
3: वो जनाब पीटीआई नेटवर्क जो है उन्होंने उसका एहतमाम किया था और उनका जो मकसद था कि जो इमरान खान साहब को जो है वो 3 साल जो है वो कैद में रखे हुए हो गए हैं, तो उनकी रिहाई के लिए जो है एक उन्होंने वहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन की थी, जिसमें जो कश्मीर में जो हुआ वहाँ पे जो कत्लो गारत हुई है उस पर भी जो है वो बात हुई, और भी पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हैं जो आपके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उस पर भी जो है वो बात हुई, तो ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पीटीआई नेटवर्क ने जो है वो डेमोंस्ट्रेशन वहाँ पे अरेंज किया था।
2: तो आपने वहाँ पे कोई गेस्ट भी आए हुए थे गैर ममालिक से?
3: जी, इंग्लैंड से जो है वो एक एक्टिविस्ट हैं और वो पीटीआई के मेंबर भी
2: हैं, शायान अली।
3: शायान अली जी बिल्कुल वो आए थे और उनका हमने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया था जो नई दुनिया की वेबसाइट पे जो है फेसबुक पे पड़ा है, आप वहाँ पे जाके जो है उनकी बातें सुन सकते हैं, वो जनाब शौकत अली ने जो है वो उनका इंटरव्यू किया था।
2: चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बात की जो है तफसील से बता दिया। तो अब हम जो है आज ये दूसरी मालूमाती बातें जो है वो, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, 20 मिनट गुजर गए हैं, तो अब हम नसर मलिक साहब की तरफ चलते हैं। नसर साहब, आप हम अब जो है ना डेनिश जो सोसाइटी की खबरें, सियासी इंटरनेशनल ख़बरें और उस पर बातचीत के लिए जो है हम नसर मलिक साहब की तरफ चलते हैं। नसर साहब, आप टेलीफोन पर मौजूद हैं?
4: जी, मैं टेलीफोन पर मौजूद हूँ।
2: अच्छा,
4: कैसे हैं आप?
2: जी जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए अपना क्या हाल है? दो हफ्ते छुट्टियाँ की हम लोगों ने, रजा भाई ने भी छुट्टियाँ की, आपने भी कुछ छुट्टियाँ की, कहीं गए आप?
4: जी, मैं नहीं बस घर पे गुजारा था।
2: अच्छा,
4: घर पे रहे।
2: अच्छा,
4: खास तो एक्टिविटीज नहीं की बस।
2: जी,
4: तो शहर में तो काफी शोर रहा जो हमें पाकिस्तान के हवाले से आजादी की तकरीबात मुख्तलिफ जगहों पर मनाई गई जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे।
2: जी,
4: तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है जी। और ये सब चीजें जो है ये पिछले तकरीबन निसर सदी से तो हम यहाँ डेनमार्क में देख रहे हैं कि हर साल मनाई जाती हैं ये तकरीबात, और पाकिस्तानी बड़े शौक से मनाते हैं।
2: जी, जी, जी।
4: पहले तो बहुत शौक से मनाई जाती थी।
2: जी, जी, जी।
4: आप भी सुना है जनाब इमरान खान साहब ने जो तमाम किया था।
2: अच्छा,
4: वो बहुत ही खूबसूरत रहा।
2: जी, जी, जी।
4: बदकिस्मती मेरी कि मैं सेहत की वजह से नहीं जा सका।
2: अच्छा,
4: तो बहरहाल ये सब कुछ अच्छा था।
2: जी, जी,
4: और
2: मैंने अभी रजा से भी बात की थी, जो आपको जो अम्बेसी ने जो इनविटेशन भेजी थी लोगों को, आपको भी मिली होगी, मुझे भी मिली। उसमें जो है उन्होंने लिखा कि आप अपना आईडी कार्ड साथ लेके आएं, उसके बगैर आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। मुझे थोड़ा सा ये अजीब सा लगा, क्योंकि कितने सालों से हम लोग अम्बेसी जाते हैं, आप कितनी दफ़ा जाते हैं, तो ये आईडी कार्ड वाला सिलसिला क्या ये क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है?
4: देखिए, डेनमार्क में पाकिस्तान एम्बेसी ने ये जो अंदाज अपनाया है इसकी क्या वजूहत हैं ये तो वही बता सकते हैं, बल्कि रेडियो हम वतन को चाहिए था कि उनसे पूछते ऐसा क्यों किया गया है। जबकि डेनमार्क के पड़ोसी ममालिक स्वीडन और नॉर्वे के सफारत खानों ने, पाकिस्तानी सफारत खानों ने जो यौम आज़ादी के तकरीबात के सिलसिले में अपने इश्तहार शायद दिए हैं, उनमें इस तरह की कोई शर्त नहीं है। उनमें किसी तरह से ये नहीं कहा गया कि भाई आने वाले जो हैं वो अपना एक शनाख्ती कार्ड जिस पर फोटो मौजूद हो वो भी साथ लाए। तो पाकिस्तान एम्बेसी कोपेनहेगन ने ये क्यों किया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से वो कहीं ये तो नहीं कर रहे कि वो पाकिस्तानी जो अब डैनिश शहरी हैं, डैनिश पासपोर्ट के हैं, उन्हें पाकिस्तानियों की फहरिस्त से ही से बाहर कर दिया जाए।
2: जी,
4: और ये भी इतना है कि इस तरह के जिन में मैं खुद भी शामिल हूँ, मेरे पास भी डैनिश पासपोर्ट है।
2: जी, जी, बिल्कुल।
4: मेरे दिल में जो पाकिस्तान के लिए जो एहतराम है वो अलग बात है। और कहीं हमें ये तो एहसास नहीं दिलाया जा रहा कि अब आप चूंकि डैनिश हैं इसलिए आप जाइए, कर देती हमारे कई लोग जो हैं उनके पास वो पाकिस्तान का एक खसूसी कार्ड है।
2: जी, जी, हाँ, हाँ जी, नेशनलिटी कार्ड। जी, जी, हाँ,
4: जो ये साबित करता है कि ये पाकिस्तान के शहरी हैं। अब हम शक्ल सूरत से भी पाकिस्तान दिखाई देते हैं।
2: जी, जी, जी।
4: और जब वहाँ जाते हैं तो हमें से बेशतर ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने इलाकाई या कौमी लिबास में होते हैं, फिर वहाँ घूमते होते हैं। यानी कहने का मकसद यह है कि बहसीयत पाकिस्तानी हमारी पहचान मुश्किल नहीं है। और फिर हमसे ये कहना चाहिए आप ये शनाख्ती कार्ड लाइए साथ लाइए, ये कुछ बंदी समझ नहीं आती।
2: बिल्कुल, और उसका आपने जी मुझे भी ये जिस चीज़ का मुझे थोड़ा सा दुख हुआ है, एक तो यह कि आप शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं उन लोगों से जिन जो आप हर साल आके आपसे मिलते हैं पाकिस्तान एम्बेसी में मुख्तलिफ तकरीबात में आते हैं, आप उनसे भी जो कार्ड ये शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है मेरी नज़र में। एनीवे
4: ये बात आपकी किसी हद तक बिल्कुल वजह है
2: जी,
4: जिसके तक तो ना जाए, लेकिन ये छांकी करना जो है ना कि फर्ज कीजिए वहाँ पर कोई ऐसा पाकिस्तानी आ जाता है जो किसी वजह से अपना कार्ड साथ नहीं ला सका, तो क्या आप उसको अंदर नहीं आने देंगे?
2: जी बिल्कुल,
4: आप उसको तकलीफ में शामिल नहीं होने देंगे?
2: और फिर आप उसको जानते भी हैं मसलन ये भी
4: जाती तौर पर आप जानते हैं?
2: हाँ जी बिल्कुल। अच्छा नसर साहब, अभी हम चलते हैं डेनमार्क की सियासत की तरफ। सबसे पहले तो ये है कि डेनिश पीपल पार्टी जो है अब वो मजबूत से मजबूतर होती जा रही है, और इस वक्त वो उस हालत में पहुंच गई है जो 2001 में थी उसकी। तो अभी वो नया जो सर्वे है उसके मुताबिक वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट

0: पार्टी बन गई है डेनमार्क में, और उसके वज़ीर-ए-आज़म तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म, उसके जो सदर हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं तो वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा भी जो है अगले इलेक्शन के बाद उसके लिए भी जो है वो कोशिश करूँगा। तो आप किस तरह समझते हैं कि एक तरफ तो चंद साल पहले डेनिश पीपल पार्टी जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई थी, अब फिर ऐसा ऐसा वो आगे आ गई है, तो क्या ये इस वजह से हुआ है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो काफ़ी लोग नाराज़ हैं वो मेथे फेडरसन से, वो फिर डेनिश पीपल पार्टी की तरफ चल पड़े हैं?
1: इस पार्टी में भी बहुत वजन है जो आप कह रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाला अरकान जो है
0: जी,
1: वो शायद डेनिश पीपल्स पार्टी की तरफ रागब हो रहे हैं। लेकिन ये चीज सामने रखते हुए ये कहना पड़ेगा कि असल में अवामी रुझान जो है वो अब मुमकिन हो रहा है, सियासतदान दाएं हों बाजू के हों या बाएं बाजू के
0: जी,
1: उनका सियासी तजाद जो है वो ये साबित कर रहा है कि आवाम जो है वो थक गए, और डेनिश पीपल्स पार्टी का एक मौकफ जो है उस पर आप शायद मुझसे इख्तलाफ राय रखते हो, वो अलग बात है, लेकिन वो ये है कि वो अपनी सियासी पार्टियां खुल कर बयान करते हैं और किसी किस्म की रियाकारी से वो काम नहीं लेते, और यही वजह है कि वो आवाम में पहले से कहीं ज्यादा मकबूल होते जा रहे हैं, खासतौर पर सूबों के मुदाफाती इलाकों में उनकी मकबूलियत जो है वो बढ़ रही है
0: जी।
1: और आपने बिल्कुल कहा कि डेनिश पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन जो हैं, जिनकी खास तौर पर मुसलमानों मुखालिफ और तारकिन वतन मुखालिफ पॉलिसियाँ जो हैं वो बात कुछ चल रही हो तो वो नजरा जो है वो मुसलमानों पर गिरा देते हैं
0: जी।
1: आपने देखा है उनका ये कहना कि वो वजारत उज़्मा के अहदे के लिए उम्मीदवार होंगे, ये वो हो सकते हैं और ऐसा आसार दिखाई देते हैं कि जैसा आपने खुद कहा इस वक्त वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जहाँ दाएं बाजू की जमातों में
0: जी,
1: और उसकी इंतहा पसंदी तो आप जानते हैं
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पिछले चंद सालों से हमारी जो वज़ीर आज़म उन्होंने जो कुछ कहा है मुसलमानों के बारे में मिनॉरिटीज़ के बारे में, वही बातें जो है वो मॉडर्न मिसेस स्मिथ भी करते हैं डेनिश पीपल पार्टी के, तो इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है?
1: इनमें ज़्यादा फ़र्क सिर्फ इतना है कि वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर आज़म होने की हैसियत में जिस तरह तारकिन वतन मुखालफ रवैया इख्तियार किए हुए हैं और जिस तरह वो बज़ात खुद मुसलमानों के मुतल्लिक ज़हर अफ़ज़ाई करती रहती हैं
0: जी,
1: वो उस हद तक डेनिश पीपल्स पार्टी जो है वो गई है तो इस तरह गई है कि वो उन्हीं के बयान को उन्हीं के लहजे में उन्हीं के तरह में दोहराती है, और जब वो दोहराती है तो वो असल में वज़ीर आज़म की जुबान बोल रही होती है और वज़ीर आज़म की तादाद की तर्जमानी कर रही होती है, लेकिन क्योंकि वो साथ थोड़ा सा मर्द मसाला ज्यादा लगा देती है लोग उसे ज्यादा सुनते हैं। और इसमें एक बात और भी सामने रखिएगा कि वज़ीर आज़म वो कुछ कहती हैं और जिस तरह उसकी तस्वीर करते हुए उसमें इजाफा डेनिश पीपल्स पार्टी करती है, उसकी कुछ जिम्मेदारी खुद तारकिन वतन पर और खासतौर पर मुसलमानों पर भी आ जाती है
0: जी। अच्छा, लेकिन नसर साहब ये जो हमारी वज़ीर आज़म है डेनमार्क में तो वो कहती हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना दायरा इख्तियार जो है और असर रसूख वो यूरोप में भी फैलना शुरू किया, जैसे आपको पता है उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया नई यूरोपियन असालम की पॉलिसी के खिलाफ, इमिग्रेशन के खिलाफ, और अब उन्होंने एक और शुरू कर दिया है, उन्होंने कहा कि हम जो है यूरोप की जो मसीह कल्चरल वैल्यूज़ हैं या हमारी जो सकाफत है और विरासत है वो क्रिश्चियनिटी की है और हम इसको हर तरीके से तहफ़ देंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तहफ़ क्या उनको कोई ख़तरा है किसी से या कोई उनको क्रिश्चियनिटी को कोई बुरा भला तो नहीं कह रहा मुसलमानों के यहाँ?
1: इस पर तो खैर बात करेंगे, लेकिन उनका ये कहना कि वो मसीहियत के इकदार को तकवीत देंगी और इसके फरोग और तहफ़ के लिए काम करेंगी यूरोप भर में
0: जी जी,
1: ये एक बड़ी अच्छी बात है
0: जी,
1: क्योंकि मसीहियत जो है वो को एग्जिस्टेंस की दावेदार है
0: जी,
1: वो तो अपने पड़ोसी को तो पूछती है कि तुमने शाम का खाना खाया है या नहीं खाया
0: जी,
1: जी? और इस तरह से गैर मसीह जो बरादरियाँ यूरोप में रहती हैं

0: वो ये समझ सकती हैं कि शायद ये लोग अपना किबला दुरुस्त कर लें और मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ने के बजाय, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय मिल बैठें और आपस में इत्तेफाक से रहें। लेकिन ऐसा उत्तर दिखाई नहीं देता। अब आपका खर्चा जो है वो बिल्कुल बजा है कि ये जो क्रिश्चियनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वज़ीर आज़म ने शोशा छोड़ा है और मसीहियत के फ़रोग़ के लिए यूरोप भर को एक नया वलवला देने का जो अंदिया दिया है, उनकी उस सोच की अकासी करता है जो वो गैर मुस्लिम गैर मसीह बरादरियों के लिए रखती है। और उसमें डेनमार्क जो है वो सर फहरिस्त है। डेनमार्क में आप देख लें कि मुसलमानों मुखालफ कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अखबार में, टेलीविजन पर, रेडियो पर और इवन के सोशल मीडिया पर जैनशियों की तरफ से इजहार नहीं किया जाता। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों को कभी कोई ऐसा मौका नहीं दिया जाता कि वो भी अपना मौकफ पेश करें। और ये तजाद जो है ये एक बड़ी शरीर की सूरत इख्तियार करता जा रहा है जो डेनमार्क में तो अच्छा है ही नहीं। अब इसका दायरा कार वज़ीर आज़म जो है, मेटे फेडरेशन सोशल डेमोक्रेट पार्टी की रहनुमा भी हैं, वो यूरोप तक फैलाना चाहती है। और आपने बिल्कुल वजह कहा कि वज़ीर आज़म को, मेटे फेडरेशन को ये फख्र हासिल है, बल्कि वो फखरिया तौर पर ये बात कहती है कि इटली के दाएं बाजू के साथ मिलकर वो बहुत तरक्की कर रही हैं और यूरोप को एक किलाबंद कॉन्टिनेंट बनाने के लिए वो कोशिशें कर रही हैं ताकि यहाँ पर कोई ना आए। और कोई ना आए कि अगर आप मुझे एक मिनट दें तो मैं वजाहत कर दूँ, इससे मुराद मुसलमान मुल्कों के लोग ना आए। और ये बात वज़ीर आज़म भी कह चुकी हैं और वज़ीर आज़म के मुशीर और उनके वज़ीर इंटीग्रेशन जो हैं वो भी कह चुके हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी आपने बताया ये बात, इसी को अगर थोड़ा सा मैं लेके आगे चलूँ तो ये हमारी वज़ीर आज़म की ये जो बयान है, उन्होंने इटली की वज़ीर आज़म के साथ मिलकर जो दिया है ईसाइयत की जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उसकी वजह ये हुई कि मोरक्को के अंदर एक स्पेनिश कॉलोनी है, वो इलाका तो मोरक्कन का है मोरक्को में, लेकिन उसके ऊपर स्पेन का कब्ज़ा है। तो वहाँ मोरक्को के कुछ तकरीबन 50-60 हज़ार यंग लोग जो है वो समुंदर पार करके वो उस इलाके में घुस गए और उसको डेनिश वज़ीर आज़म ने और दूसरे जो मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक के लोग हैं उसमें यूरोपियन कमीशन है, उन्होंने इस तरीके से पेश किया जैसे कि गैर मुल्कियों का, मुसलमानों का समुंदर जो है वो यूरोप की तरफ चला आ रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि स्पेनिश गवर्नमेंट ने सब के सब उन लोगों को मोरक्को की हुकूमत के साथ मिलकर वापस भेज दिया मोरक्को में, लेकिन उसका बहाना बना के जो है अभी ये क्रिश्चियन वैल्यूज़ की बात की जा रही है। तो ये दो चीज़ें तो बिल्कुल उसका कोई साथ ही नहीं है। मोरक्कन यहाँ पे कोई वो आए थोड़े ही हैं या कोई आना नहीं चाहते थे, वो तो सिर्फ यंग लोग काम की तलाश में उस छोटी सी कॉलोनी में घुस गए थे।
0: जी, आपने बिल्कुल वजह कहा। और इस सारे वाक़े की जो पस मंज़र है
1: जी,
0: वो वही जज़ीरा है जिस पर स्पेन ने कब्जा कर रखा है।
1: एग्जैक्टली।
0: आप देखा जाए तो ये तुकबंदी की बातें नहीं है, हकायक हैं, लेकिन ऐसे हकायक जिन पर कोई बात नहीं करता।
1: जी,
0: चाहिए तो ये कि स्पेन वो इलाका मोरक्को को वापस करें।
1: वेरी ट्रू।
0: नंबर एक, अगर वो मोरक्को से वो लोग वहाँ पहुँचे हैं तो वो मोरक्को ही के एक इलाके में पहुँचे हैं
1: बिल्कुल,
0: जिस पर स्पेन ने कब्जा कर रखा है। अब इस बात को तो छुपाया जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये लोग मोरक्को से मोरक्को की हुकूमत की पुष्पनाई पर यहाँ आए हैं। मोरक्को ने इन्हें वहाँ से सफर रक्त सफर बांधते हुए रोका नहीं है। और ये और वो मोरक्को ने इसलिए नहीं रोका, एक तो उसे खबर ही नहीं थी कि ये मनसूबा चल रहा है सरकारी तौर पर, दूसरा ये लोग आप मोरक्को ही के इलाके में आ रहे थे। इसको जरा आप देखिए कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वहाँ जाने के लिए लोग जो हैं वो जाते हैं लेकिन इसराइल रोक देता है।
1: जी जी,
0: इसी तरह ये सिलसिला जो है ये चल रहा है। और इसराइल के वज़ीर आज़म ने तो खुद कहा है कि हमने तो 15-20 साल पहले मोरक्को से कहा था कि अगर तुम इसराइल पर तनकीद करना छोड़ दो और पीएलओ का उन दिनों पीएलओ ज़रा एक्टिव थी उसका साथ देना छोड़ दो और अगर ज़ाहरी तौर पर नहीं कर सकते हो तो बाकी तौर पर उसका हमारा साथ दो, तो हम तुम्हारे लिए स्पेन के इस इलाके से स्पेन की दस्तबरदारी के लिए कोशिश करेंगे।
1: अच्छा,
0: तो ये हाँ ये बयान जो है ये रिकॉर्ड बढ़ रहा है।
1: जी जी जी।
0: दूसरी तरफ अब अगर आप देखते हैं दूसरे यूरोपीय ममालिक हैं उनको खतरा है, वो बिल्कुल बुरा है, क्योंकि अगर स्पेन इन लोगों को अपने यहाँ रहने की इजाजत दे देता है, और आपने देखा है कि पिछले साल स्पेन ने तकरीबन 1 मिलियन के करीब गैर मुल्कियों को अपने रहने की इजाजत दी है।
1: जी, उनको लीगल कर दिया। जी,
0: उनको लीगल कर दिया है।
1: जी, जी,
0: और तो हो जाने के बाद वो लोग जो है वो स्पेन से किसी भी दूसरे यूरोपीय यूनियन के मुल्क में जा सकते हैं।
1: लेकिन सवाल
0: खतरा है कि स्पेन अपने यहाँ अपना की कमी को पूरा करने के लिए गैर मुल्की को कानूनी हकूक देते हुए का हक दे देता है। ये दरअसल उन लोगों को यूरोप के दूसरे मुल्कों में दाखिल होने के दरवाजे खोल देता है।
1: लेकिन जैसे आप जानते हैं कि वो लोग जो अगर वो लोग स्पेन से अगर डेनमार्क आए या इटली जाएं तो वो तो काम की तलाश में जाते हैं, वो कोई अपना कोई सकाफत फैलाने तो नहीं जाते या अपना कोई मजहबी मिशनरी बन के थोड़ी जाते हैं, जब जिस तरह वज़ीर आज़म कह रही हैं हमारे।
0: ये आपने बिल्कुल मजा कहा कि वो दीन के मुबल्लग बनकर नहीं जाते बल्कि वो रोजगार की तलाश में जाते।
1: Exactly, जी।
0: लेकिन खतरात जो है जो क्या सराहनीय है वो इसी तरह घूम फिर कर इसी नुक्ते पर आती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं।
1: जी जी जी।
0: आपने ये भी देखा है कुछ बातें जो है वो जहाँ रेडियो पर तो हम न कर सकें लेकिन अपनी सोच तक तो मैं बीज रख सकते हैं कि हमें तो कुछ सोचना चाहिए कि हम यहाँ रोजगार के लिए आए थे, रोजगार के लिए हमने अपनी दो नस्लें यहाँ पर हमारी अपवान कर गई है ये, तो उसके बाद जिन चीजों से तंग आकर हम लोग अपने मुल्कों से इधर हिजरत करते हैं, खासतौर पर मैं अरबी और नस्ल लोग जो हैं और अफ्रीकी लोग जो हैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, वही चीजें फिर हम यहाँ पर लागू करना चाहते हैं।
1: जी जी जी।
0: उनकी जिंदगी जद्दोजहद करना चाहते हैं।
1: जी जी जी जी।
0: हमें हर चीज हासिल है यहाँ पर एक हद में रहते हुए मुल्की कानून का एहतराम करते हुए।
1: अच्छा, ये भी जो आप बात करें अगर मैं इसी की तरफ आऊं तो आपने एक आर्टिकल लिखा है अपनी वेब पेज पे इस इशू पे, वो जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो हिज़्ब तहरीर को बैन करना चाहती है, और ये कोशिश बहुत हुई है पहले भी लेकिन उसका कोई लीगल जवाब नहीं मिलता हुकूमत को, लेकिन बार बार जब एक ऐसी तहरीक आप उससे जो है अग्री करें या ना करें या मैं उसको बुरा समझूं ना समझूं, लेकिन यह है कि एक लीगल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जब आप बैन करते हैं बहाने बना के, तो ये तो फिर बात गलत हुई।
0: ये बात न सिर्फ गलत है बल्कि ये वज़ीर आज़म का और इस तरह के बयान देने वाले वो लोग जो हिंदू तारीख को बैन करना चाहते हैं, पाबंदी चाहते हैं, उनकी अहमकाना सोच का नतीजा है।
1: जी बिल्कुल।
0: यहाँ सुप्रीम कोर्ट तो है वो फैसला दे चुकी है कि ये तारीख जो है यहाँ बिल्कुल जमहूरी तौर पर कानून की दायरे में रहते हुए काम करती है और इसके हिसाब में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से इस पर पाबंदी लगाई जाए। ये बात अलग है कि यूरोप के 2-3 मुल्कों में इस पर पाबंदी है जिनमें जर्मनी सबसे पहले है।
1: जी जी।
0: लेकिन देखना ये है, अब आप सवाल की तरफ आते हैं कि जब वज़ीर आज़म

0: ग्रुप्स के को जाके कमेंट करते हैं, जिसमें वो ग्रुप जो है उसमें साफ तौर पे ये दावत दी जाती है, ये कहा जाता है कि मुसलमानों को कत्ल कर दो। तो ये सियासतदानों तक ये बात जो है अब ये बात फैल गई है।
1: ये इंतहाई दुख की बात है और ऐसी कुछ साइट्स मैंने भी देखी हैं जिनमें इस बात पर उकसाया जाता है। सवाल ये पैदा होता है जब सियासतदान खुद ऐसी वेबसाइट पर जाकर खुद तबसरा करते हैं तो वहाँ कानून क्यों खामोश रहता है, जबकि यही बात अगर मुसलमान किसी वेबसाइट पर लिखते, यहाँ जनबात में रहने वाला कोई नौजवान मुसलमान तो उसका पस मंजर हो, वो कोई ऐसी बात कर दे तो कानून खुद हरकत में आ जाता है। और ऐसे तीन चार मामला हुए हैं जिनमें नौजवानों को इस तरह की इंतहाई मुतशद्दिदाना बयानात लिखने पर सजा भी दी गई है और तंबीह भी की गई।
0: जी हाँ।
1: तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुआशरे को, और खुद सियासतदान जो इंसानियत के गीत को गाते हैं लेकिन दूसरी तरफ वो डेनमार्क में रहने वाली एक अकलियती बरादरी को किस तरह निशाना बनाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: मैं यहाँ ये भी अर्ज करूंगा हमारे कई नौजवान जो है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में काफी मुतहर्रिक है, खासतौर पर सोशल डेमोक्रेट पार्टी में, और इसमें

0: इसके हैं। तो अभी ताजा तरीन मिसाल ये है कि तीन लड़के यहाँ डेनमार्क में ऐसे पकड़े गए हैं जो एक स्कूल को बम से उड़ाना चाहते थे। आपने मुकेश पढ़ा हो?
1: जी जी हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: तो इनको अपने घर के अंदर भी ये चीज देखनी चाहिए, इससे पहले की ये इल्जाम लगाते करे। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग जो है सारे ही पाक साफ है, नहीं, हमें भी आपने आपको देखना चाहिए, आपने अब करना चाहिए, कानून के दायरे में रहना चाहिए। लेकिन ये सब बातें करते हुए भी जब हमें मुर्दे इल्जाम खड़ा जाता है तो हम ये पूछ

0: ध्यान दिया ये जो तीन बच्चों की आपने डेनिश बच्चों की बात की, उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चे कुछ ऐसा करना चाहते तो उनको चाहिए था कि वो हॉटलाइन को कांटेक्ट करते और कोई जो है साइकोलॉजिकल हेल्प उनको दी जाती। तो ऐसे ऐसे महसूस होता है कि अगर कोई डेनिश बच्चे अगर डेनिश लोग अगर टेररिज्म की तरह मायल हों तो उनको कहा जाता है कि इनका मेंटली डिस्टर्ब है ये और इनको इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर यही कोई बात अगर कोई मुसलमान शख्स करता या कोई तंजीम कुछ कहती तो उसके ऊपर फौरन जो है वो टेररिज्म रेडिकलाइजेशन का इल्ज़ाम लग जाता है। तो यहाँ भी ये महसूस होता है कि डेनमार्क के जो सियासतदान हैं वो अगर एक डेनिश गोरा डेनिश अगर कोई बात करता है तो उसको और तरीके से देखते हैं, अगर कोई गैर मुल्की या मुसलमान ख़ास तौर पर अगर कोई जुर्म करने की तरफ मायल होता है तो उसको और तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है।
1: बिल्कुल आपने भेजा कहा, और चीज ये है कि ऐसा जिनका ये इरादा हो कि वो किसी स्कूल को सरकारी इमारत को या किसी जगह को बम से उड़ा देना चाहते हैं तो क्या आप समझते हैं कि वो किसी से जाके मशवरा करेगा कि हम इसको किस तरह ना उड़ाएं?
0: जी
1: जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो किसी माहिर से ये पूछे कि इसको किस तरह आसानी से उड़ाया जा सकता है। तजुब होता है, बाद बात हंसी आती है डैमेज सिस्टम पर। आपको तो याद है जहाँ पर एक हेल्पलाइन है जो उन अफसाद की मदद करती है, रोकती है उनको जो खुदकुशी का इरादा करते हैं।
0: जी हाँ।
1: अब्बासी साहब, जब आपने मरने का इरादा कर ही लिया है, आपसे मुराद आप नहीं कोई और, तो क्या आप पहले उनको टेलीफोन करेंगे कि जी मुझे बताइए कि मैं कैसे बच सकता हूँ?
0: जी जी जी, उसकी नसर साहब उसकी वजह यह है कि सोसाइटी ये समझती है,
1: वजह मुझे भी मालूम है।
0: नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहा जाता है कि उसका उसके साथ बात करने से, उसकी बात सुनने से हो सकता है कि उस शख्स की मदद उसको मदद मिले और वो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाए। तो क्या यही बात उस शख्स की तरफ के साथ भी होनी चाहिए जो मुसलमान हो या गैर मुल्की हो और कोई गलत काम करना चाहता हो? तो क्या उनको नहीं चाहिए कि उनके बारे में भी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए?

0: मैंने उनको कहा कि प्लीज़ हर जगह में दरवाज़ा खोलें तो वो हमारे पे बरस पड़े। तो ये मंशियात का मसला भी बहुत बड़ा मसला है सोसाइटी में, और इस पे ख़ासतौर पे नौजवान लोगों पे, इस पे भी तो सियासतदानों को थोड़ी सी ज़्यादा गर्म जोशी दिखानी चाहिए।
1: या आपने बिल्कुल बजा कहा है, ये मसला बहुत तेज़ी से और तुम तो बड़ी तेज़ी और बड़े मुस्बत अंदाज में जेरे बहस है
0: जी,
1: बिल्कुल। और अभी हालिया सर्वे जिसका आपने जिक्र किया है उसकी रोशनी में मुख्तलिफ लोग जो हैं जो इस मामले को जानते हैं
0: जी,
1: वो अपनी अपनी आरा का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी चीज़ें आकर मार्केट में कैसे आ जाती हैं, इनको रोका क्यों नहीं जाता?
0: बिल्कुल,
1: अभी अभी आपने देखा है कि नरब्रो के इलाके में और दूसरी जगहों पर पुलिस ने कुछ छापे मारे हैं मुख्तलिफ छोटी छोटी कियोस्कों पर जहाँ से ये चीज़ें बरामद भी हुई हैं।
0: और चर्च वगैरह भी अभी जब से क्रिश्चियनिया बंद किया है तो वो भी बहुत फैल गई है अभी।
1: और मैं आपने सुनने वाले जो आबाद हैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि हर चंद के इसमें आप पैसे कमा सकते हैं और पैसे कमाते भी हैं, लेकिन खुदा के लिए ऐसी चीज़ों से परहेज कीजिए, इज्तनाब कीजिए, ना इन्हें फरोख्त कीजिए और ना इन्हें अपने पास रखिए। और अगर आपके पास कोई नौजवान आता है जी मुझे ये चाहिए तो उसे छुपके से वो पुड़िया पकड़ाने और पैसे वसूल करने की बजाय उससे कहें कि अपने आप को संभालो, आप क्यों अपना अपना जोबन और अपने आपको अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने नसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और मुख्तलिफ मौजूआत पे हमने बात की है।
1: बहुत नवाजिश आपकी। और सिर्फ अब जुमे के दिन तो हमारा योम आज़ादी का वो गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते हैं और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि पाकिस्तान वाकई ही अपने आज़ादी को आज़ाद मुल्क के तौर पर मना सके।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रज़ा भाई। ये था आज का हमारा प्रोग्राम और हमें उम्मीद है कि हमारे सामईन और नाजरीन जो है उनको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए होगा। तो अगले हफ्ते हम एक और नया प्रोग्राम आएंगे जिसमें हमने एक गेस्ट को भी बुलाया है, उसके साथ भी हम बातचीत करेंगे। तो अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984। ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम वतन।

13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान

0: इस मेला के हवाले से
1: जी
0: और
1: जी
0: जो इस वक्त सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खूब इन्जॉय किया।
1: ठीक,
0: बात इस तरह ही है कि सबसे पहले हम उसका जिक्र करेंगे और मैं अप्रिशिएट करूँगा। मैं खुद 5 प्रोग्राम में गया हूँ।
1: ठीक है,
0: लेकिन मेरे ख्याल में 8 या 9 प्रोग्राम हुए हैं अगर शुरू से हम शुरू करें पिछले 2 माह से।
1: जी जी,
0: इतने अच्छे प्रोग्राम हुए हैं, सब ने इतना अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, उसमें हमें पाकिस्तान का कल्चर, उसमें हमें पाकिस्तान की चीज़ें, उसमें मैंने देखा डैनिश भी बहुत आए, चाहे वो ब्रॉनबी हो, चाहे वो उधर अर्बसलोंड हो, चाहे वो बेलो में प्रोग्राम था, अब हमारा प्रोग्राम जो था
1: जी जी।
0: तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान सोसाइटी का जो प्रोग्राम था, हमने 6 माह पहले प्लान किया था।
1: अच्छा,
0: उसका मकसद था जो हम हमेशा पाकिस्तान सोसाइटी जो है इसका एक जो मिशन है, जो मेन मकसद है, वो है पाकिस्तानियों की खिदमत, अपने वतन की खिदमत, अपने लोगों को साथ लेकर चलना, इस मुआशरे के अंदर जो हमारे प्रॉब्लम है उनको जागर करना, उनका हल ढूंढना। तो हमने तो प्लान इस तरह किया था प्रोग्राम जो आपने परसों, आप भी शामिल थे, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जितनी बड़ी तादाद में लोग आए, जितना लोगों ने इन्जॉय किया, उसे कल्चरली, उसे फाउली जिसे कहते हैं, और सारी चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा माहौल में हमें करने का मौका मिला, और हमारे बहन भाइयों को देखने का और साथ देने का। और हम तो इसी तरह है, चौधरी विलायत एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, और उनकी टीम, हमने इस प्रोग्राम से भी अपनी कुछ गलतियां जो हैं उनको भी हमने अपने वो नोटिस लिया, और तजवीज़ात जो आई हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उसको साथ लेकर चलेंगे। तो ये तो फिर इस तरह ही सारी चीज़ें जो है। दूसरी जो बात आपने की कि मुझे हुए यहाँ 55 साल, देखें चीज़ें बदली हैं, दुनिया बदली है, और डेनमार्क बदला है। अगर तो मैं बात करूं उस वक्त की जब हमारे बुजुर्ग आए थे, तो मैं अक्सर कहता हूं, पिछले दिन भी आप एक जगह थे, वो जो स्पेन से कुछ मेहमान आए थे, वहां मैंने जिक्र किया, हमारे बुजुर्ग दर हकीकत मैं तो 11 साल का था, ये हाजी मुस्तफ़ा, मेरे बुजुर्ग मियाँ शफीक साहब, सारे ये उस वक्त हमारे बहुत सारे बुजुर्ग जो मैं उस डेनमार्क को जानता हूँ जब 2500 पाकिस्तानी थे।
1: अच्छा,
0: ये स्टेशन, ये मेन स्टेशन जो है, ये इनके उठने बैठने की जगह थी, यहाँ एक दूसरे को मिलते थे। उस वक्त कोई यानी कि वो कोई शिया नहीं था, कोई सुन्नी नहीं था, कोई वहाबी नहीं था, उस वक्त कोई बलोची नहीं था, पख्तून नहीं था, पंजाबी नहीं था, सिंधी था, उस वक्त पाकिस्तानी थे और मुसलमान थे। आप यकीन करें एक दूसरे को इस तरह साथ, एक अगर एक के पास एक कमरा है 2 बंदों के लिए, तो वो कहता था कि आओ यार मेरे साथ, मतलब आप, और किसी के पास जगह नहीं थी रहने के लिए, तो उसे अपने साथ शेयर करते थे, फिर उसकी हेल्प करते थे। और इन्हीं चीज़ों से ये हमारे प्यारा मेरा दोस्त, मेरा भाई चौधरी विलायत निकला, जिसने उस टाइम से लोगों के साथ अटैचमेंट हुई, उनके मसले मसाल देखे। अच्छा, फिर लोग आए थे उस वक्त 5 सालों के लिए,
1: ठीक है,
0: जो मैं बात करता होता हूँ कि एक ट्रैक्टर के पैसे लेने या एक बरांदा बनाने के लिए। तो अब शेख साहब हम हैं इधर 4th जनरेशन में, आप भी जानते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें बदली। आज का डेनमार्क जो है ये फॉरनर्स के लिए, खुसूसन तौर पर मुसलमानों के लिए कितना चेंज हो चुका है।
1: अच्छा,
0: इसमें हमें कितनी दुश्वारियाँ हैं, हमें किस तरह चीज़ें जो हैं मुश्किल, कुछ मुश्किल में भी हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे बच्चे जो हैं, जो अब 4th जनरेशन में, जब मैं दूसरी में, तो मैं अपने आप को समझता हूँ, मेरे बूढ़े थे, बड़े थे, मैं था, आगे जो मेरे बच्चे हैं, अब मेरे बच्चों के बच्चे हैं ना, तो इसलिए हम 4th में, मेरी मेरा नवासा है 11 साल का,
1: ठीक है,
0: ये रजा भी इसी तरह, मुझे पता है कि सारा फैमिली सिस्टम जो है समझते जानते हैं। तो इसमें ये हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमें बड़ा फख्र है जफर के
1: जी,
0: हमारे बच्चों ने माशाल्लाह इतनी इतनी अच्छी पोस्टों पर हैं। आप जिधर जाएंगे, आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे
1: जी,
0: तो आपको हर तरफ, यानी कि एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स, बल्कि जो ओवल ए की शक्ल में, यानी कि कम से कम 10 डॉक्टर हैं इस वक्त पाकिस्तानी
1: जी जी,
0: जो ओवल ए है, ये बहुत बड़ी बात है।
1: ठीक है,
0: सो हमें फख्र है इन चीज़ों पर। और वो इस معاشرے کا حصہ ہے ہم نے اس چیزوں کو سمجھ کر چلنا ہے اور الحمدللہ سارا کچھ آپ کے سامنے
1: یہ تو ہم ریکگنائز کرتے ہیں میاں صاحب کے

0: पहली बात तो रजा ये है कि आज 55 साल बाद भी हम ये फाइनिंग सोसाइटीज और ये सारी सोशल वेलफेयर की जितनी भी आप कहेंगे कि लाइंस हैं, इनको हम समझे ही नहीं। हम इधर भी चुदराहट के लिए, अपने अपने आप को सामने लाने के लिए, अपने साथियों को प्रमोट करने के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। मसाजो जो है अल्लाह के घर है। हमने खुद आपके वालिद साहब ने ये क्रेडिट आपको जाता है कि आप उस इंसान की औलाद हो जिसने पहले सबसे पहले जो मस्जिद थी और उसमें खिदमत की। मैंने आपके बाप को यानी कि वहाँ माजद के साथ सफाई करते, चाहे वो वॉशरूम में हो जिधर भी हो, मैंने देखा है। और मैं सलाम और सलूट करता हूँ उन तमाम अपने बुजुर्गों को, साथियों को, जो सारा काम। अच्छा, आप मसाजद जो हैं, मेरे ख्याल में ये मसाजद का कसूर नहीं है। जो मसाजद के अंदर कमेटियाँ बनती हैं, उसमें ऐसे फिर लोग घुसते हैं जो अपनी वो कमेटी को अपने हाँ यानी कि कैचर करते हैं। और फिर उससे क्या आगे होता है कि जब दूसरा कोई हो जिसके साथ आप हो, उसे आप पूरा मौका देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने खुद देखा है। मैं सारी मसाजिद मेरी मसाजिद है
1: जी जी।
0: और जिससे नहीं है, मतलब वो बरादरी भी हो सकती है, थोड़ी सी अपने अपने इलाके की बात हो सकती है, तो फिर दूसरे को मौका नहीं दिया गया। और उससे क्या हुआ कि जो सही कैंडिडेट था, जो इस काबिल था, वो साइड पर उसे रहना पड़ा, उसे वोट नहीं पड़े। जो सिर्फ बरादरी की वजह से मस्जिद या उसकी, आपको पता है कॉन्सर्ट के लिए बहुत सारी मसाजिद या बहुत सारी जगह या बहुत सारी कम्यूनों में 250-300 वोट बहुत वोट होता है, 400 से हर कोई बन जाता है। मैं भी जानता हूँ इस सिस्टम को। तो मसाजिद जो है सारी माशाल्लाह, उनके पास एक नमाजियों के एक नंबर्स होते हैं, तो अगर 250-300 वोट मिल जाए वहां से तो वो काउंसलर बन जाता है। होता यह है कि फिर वो आगे जाकर वो काम जो उसने करना है। अच्छा, फिर ये एक और बात बड़ी गलत है कि एक काउंसलर जो है वो एक काउंसलर है यार, वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। उसकी शोबाजी, उसकी सोच, उसका निजाम जो है इस तरह। और फिर हम लोग यानी कि इन चीज़ों को अब हम छोड़कर आगे आना चाहिए। अगर मुनीर सही काम नहीं कर रहा, मैंने तो खैर कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, एक ही इलेक्शन लड़ा था, वो टाक्सा के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा कर्म है। लेकिन रजा, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ये हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट या गलत सोच है। मसाजिद अल्लाह का घर है, वो इसमें कोई शक नहीं, वो हम सब का है और वो अल्लाह का घर है। लेकिन वहाँ से जो हो सकता था, देखें हमने मस्जिद को भी क्यों पाबंद किया हुआ इस बार ही कि मेम्बर रसूल था कि वो मस्जिद जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से यानी कि सबसे बड़ा वो प्लेटफॉर्म भी वही था
1: जी जी,
0: तो मस्जिद को वो बनना। लेकिन सही लोगों के साथ, दयानदारी के साथ, ज़रूरत के मुताबिक और वो माहौल वहाँ पैदा करना जो सबके लिए हो, ठीक है।
1: लेकिन जी
2: जी बिल्कुल मियाँ साहब इसी तरह ही है। और मैं समझता हूँ कि हम सब में जो है ना वो एक बहुत बड़ी मुनाफ़कत पाई जाती है, जो जिस ओहदे पे या जिस जगह पे बैठा है। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं रेडियो पे हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी मैंने मियाँ मनीर साहब के साथ, मेरी नहीं बनती मैंने इनको नहीं बुलाना, मेरी जफर शेख साहब पर नहीं बनती मैंने इनको नहीं बुलाना। हम भूल जाते हैं कि ये रेडियो जो है ये पाकिस्तानियों का है, ये पाकिस्तानियों की आवाज है। कोई भी पाकिस्तानी हो, क्या उसका कोई मसलक मजहब कुछ भी हो, कोई सोच भी हो, ये रेडियो उसका है, ये आवाज है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी अना अपने मकासद के लिए हम उन चीज़ों को करते हैं। हमने देखा है किस तरह ये आपने बिल्कुल कहा, ये मस्जिद नहीं करती, लेकिन मस्जिद की जो चलाती है वो इंतजामिया चलाती है, यानी दैट्स मीन कि वो इंतजामिया जो है वो कर रही होती है। इमाम साहब तो गरीब, उनको तो वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। तो ये साहब जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, आप देख लें, आप इस बखूबी जानते हैं, आप वहाँ उन जगहों पे बैठते हैं जहाँ पे ये फैसले होते हैं, किसको बॉयकॉट करना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। और ख़ास तौर पे उन लोगों को नहीं बुलाया जाता जो सवाल उठाते हैं, जो सही बात करते हैं, उनको जो है ना वो कोने लगाया जाता है, बजाय इसके कि जो मुनाफ़कत करते हैं, जो गलत बात करते हैं, उनको जो है उनका सोशल बॉयकॉट किया जाए। नहीं नहीं, उनको जो है वो तगमे भी दिए जाते हैं, उनको शील्डें भी दी जाती हैं, उनको जो है वो हर चीज़ से नवाजा भी जाता है, स्टेज भी दिए जाते हैं, लेकिन जो हक सच की बात करता है उसको जो है वो कोने लगाया जाता है।
0: देखें रजा, पहली बात तो ये है कि बड़ी बदकिस्मती है میرے گھر میں بھی میرے تین بچے ہیں چلے دو بیٹے جو ہیں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں ماشاء اللہ وہ مساجد میں جاتے ہیں اور پابندی سے, لیکن ہماری جتنی بھی مساجد ہیں کسی ایک مسجد میں جو ایک ینگسٹر کا گروپ جو ہے وہ بالکل لو سائڈ پر ہے, چند ایک بچے ہوں گے جو جن کو ضرورت کے مطابق انوالو کیا جاتا ہے, یہ میں بہت بڑا نقصان سمجھتا ہوں.
1: جی جی
0: یہ بچے جو ہیں یہ ہم بڑوں سے, اچھا پھر اس میں ایک اور بات جو ہے, اب اچھی بات نہیں ہے میں ایسے بات کر رہا ہوں لیکن میری عادت ہے میں کھل کر کرتا ہوں, جس نے تھوڑا سا زیادہ چندہ دے دیا اسے ہم جو ہے نا یعنی کہ اس طرف لے جاتے ہیں کہ جی انہاں دی گل سنو
1: بالکل
0: ان کو آگے کرو.
1: جی
0: یہ ساری چیزیں جو ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اگر یعنی کہ ہم کوئی 15-18 سال ہوئے ہوتے نا سیر نظام کو چلاتے تو پھر تو اٹس اوکے, یعنی کہ یہ 30 سال پہلے ہمیں ختم کر دینی چاہیے بھول جانی چاہیے تھی, لیکن ایسے نہیں ہوا. اب آپ نے جو بات کی ہے دیکھیں میں پھر یہ بات کہوں گا رضا, بالکل میڈل بھی ہوئے ہیں یہاں سے جدھر سے فیصلے ہوئے ہیں لوگوں کو دیے گئے ہیں انہوں نے کیا کیا کیا ہم سمجھتے ہیں وہ اپنی جگہ میں بھی جانتا ہوں, جب پوچھتا ہوں تو پھر وہ ایک بات جو سامنے نکلتی ہے, میں تو نہیں اتفاق کرتا سب چیزوں سے لیکن حقیقت یہ ہے, اور یہ آپ نے نہیں کہنا کہ میں اس اسٹوڈیو میں ہوں جس میں اور آپ کے والد اور حاجی مصطفیٰ چودھری ولایت خواجہ آصف, یعنی کہ میں کتنے نام لوں ان بزرگوں کے جن کا حق بنتا تھا.
1: جی جی بالکل,
0: کسی نے کشمیر کے لیے کام کیا, کسی نے پاکستانیوں کے لیے کام کیا, کس نے دین اور مذہب کے لیے کام کیا, جن کو دیے گئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں دینے چاہیے تھے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جن کا پہلے حق تھا پہلے ان کو ملنا چاہیے.
1: بالکل ان کو,
0: تو یہ چیزیں جو ہے نا میں,
1: لیکن میاں صاحب میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا رضا صاحب کی بات کو, کہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں, وجوہات ہوتی ہیں, ان وجوہات کو دیکھنا چاہیے نا. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تنظیمات میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتے, ڈفرینس کرتے ہیں, لیکن

0: बदकिस्मती है हमारी कि लोग जो इलेक्ट होके बस साइड पे हो जाते हैं, ठीक है जी मेरे नाम के साथ स्पॉन्सर लग गया है, लेकिन वो अपने काम के हवाले से किसी मकामी मीडिया पे आपके ये बताना पसंद नहीं करते, ये आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है।
1: देखें शेख साहब, बात यह है, अब मैंने तीन अपने बुजुर्गों के नाम लिए
0: जी जी,
1: मेरे नज़दीक एक बहुत प्यारा बहुत बड़ा नाम है, मेरे बड़े हैं वो
0: जी,
1: मैं उनकी सारे हाजी रियाज साहब
0: जी जी,
1: देखें ना ये वो लोग हैं, मैं मतलब मैं तो आपको 15 लोगों का नाम, अभी 4 हुए हैं
0: जी जी,
1: हाजी गुलाम मुस्तफ़ा तो इस दुनिया से चले गए, चौधरी वलैद साहब अल्हम्दुलिल्लाह सलूट हिम मैं करता हूँ, ख्वाजा साहब का मैंने नाम लिया, हाजी रियाज साहब का नाम लिया, ये हमारे वो बुज़ुर्ग हैं जिनसे कम से कम मैं तालिब इल्म ने बहुत कुछ। अब जो आप जो बात कर रहे हैं, देखें एक जो काउंसलर है ये वो लोग नहीं होते कि एक नेशनल लेवल पर मीडिया में या इन चीज़ों में इतना हिस्सा डैनेज तो कम से कम नहीं लेते, लेकिन वो काम जरूर करते हैं,
0: लेकिन अपनी काम जो जिम्मेदारी होती है बुनियादी तौर पे, बुनियादी मिसाल जो हमारे
1: असल में जफर बात ऐसे है कि मैं अक्सर देखता रहता हूँ, यहाँ मना नहीं है
0: जी,
1: जितने भी हमारे ये काउंसलर है ना, आप भी तो है ना
0: जी जी,
1: वाइस चे अपना पुमेश्ता भी है
0: जी जी,
1: अगर आप इनका जाकर प्रोटोकॉल क्या कहते हैं उसे यार, प्रोटोकॉल नहीं प्रोटोकॉल अगर चेक करें,
0: अच्छा
1: इधर यानी कि ये कोपेनहेगन कम्यून में,
0: अच्छा
1: जाना रजा जरूर चेक करना कि इस वक्त जो यहाँ बंदा एक पाकिस्तानी बैठा है जिसका नाम सिकंदर सदीक है, वो उसकी क्या एक्टिविटीज है, दूसरी जगह पर जरूर चेक करना, यानी कि मैं अब किसी फर्द वाहद का नाम नहीं सिर्फ लेना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर उइगल होते हैं, आप कम्यून का जो है आप काउंसलर हो, आपने वहां बैठकर वो चीज़ें करनी है जो आप वहाँ लोकल प्लान जो है उसके मुताबिक उसमें क्या बेहतरी हो सकती है। और स्टोवा कोपेनहेगन इसके अंदर तो फॉरनर पाकिस्तानी मुसलमानों की एक खासी तादाद है, वहाँ मामला क्या है, बच्चों के लिए क्या है, वहाँ के जो लोकल सिस्टम है उसके उसमें क्या हो रहा है, आप अपने लोगों को क्या वहाँ दिलवा सकते हो, जिसमें बच्चों की एजुकेशन का मसला है, बॉन है उनके अंदर बहुत सारे मसले आ रहे हैं, खाने की बातें हो रही हैं, डैनिश चीको पकार कर रहे हैं जी हम तो, यानी कि ये हलाल मीट जो है हम हमारे बच्चे क्यों खाएं, लेकिन इसी डेनमार्क में सबको एक नज़र से मज़हब पर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये सारी चीज़ें हर एक का हक है, लेकिन करने की बात यह है, मैं खुद ये हम बहुत दफ़ा ये बात करते हैं, अभी आपने देखा है ये प्रोग्राम था परसों
0: जी,
1: हमने किसी को उस नज़र से नहीं बुलाया, जो आए हैं आए हैं ठीक है, लेकिन क्योंकि इन लोगों को ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी टीम के अंदर, देखें चौधरी विलायत के अंदर हम 10-12 लोग हैं जो पाकिस्तान सोसाइटी के अहदेदार हैं, हमने बैठकर मीटिंग की, हमने सोचा ये जो लोग हैं, और मैं खुद इस सोच में हूँ अब, क्योंकि हम इतनी इनको करते हैं, इलेक्शन आते हैं तो ये हर तरफ जो है ना फोन करते हैं, अंकल जी इधर हो, भाईजान इधर हो, लेकिन जब इलेक्ट हो जाते हैं, जो इलेक्ट हो जाते हैं हमें नजर नहीं आते, फिर उन्होंने काम क्या किया, जब वही अंकल मुनीर जाकर देखता है इनका जो क्या कहते हैं वो प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर इनकी 1/3 मतलब हाजिरी होती है, और जो 1/3 हाजिरी होती है वहाँ कितना कोई बोला
0: जी जी,
1: क्या उसने कहा वो कुछ सामने नहीं आता।
0: अच्छा ठीक है, चलें ये तो सियासत, वैसे भी हम रोना रोते रहेंगे वक्त के साथ साथ, जब आएंगे इलेक्शन तो फिर आँख ओझल पार ओझल हो जाता है इसी तरह। अच्छा ये प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा हम फोकस करें कि यहाँ 7-8 प्रोग्राम हुए हैं तकरीबन, ये जुलाई से शुरू हुए थे मैंने नोट किया है, तकरीबन 11 जुलाई से लेकर ये 14 अगस्त तक के प्रोग्राम, उनमें मैंगो फेस्टिवल के नाम से ज़्यादा ये प्रोग्राम अरेंज किए गए हैं, और इसमें ये अच्छी बात है कि ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंट नुमाइंदगी होती है, कि पाकिस्तान की ये सौगात जो आती है पूरी दुनिया में ये चली जाती है और लोग उसको पसंद भी करते हैं, इसके साथ साथ बाकी पाकिस्तानी खाने भी लोग आके खाते हैं। अच्छा इस दफ़ा ये जितने प्रोग्राम हुए हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहा है, इंक्लूडिंग आपका प्रोग्राम पाकिस्तान सोसाइटी डेनमार्क के प्लेटफॉर्म से, अच्छा इसमें आपने एक तो तकारीर का वो इतना ज़्यादा नहीं किया, और दूसरा इसमें स्टॉल वगैरह लोगों के वो हायर किए गए हैं या वहाँ लगाए गए हैं। अच्छा लोगों का ख्याल ये है कि उन स्टॉल में, ये मुझे नहीं पता कि जितने भी प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं या सोसाइटी हैं उन्होंने उनसे कितने पैसे लिए, ना मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये तो उनकी अपनी एक ज़ाती है जिम्मेदारी, लेकिन लोगों की राय थोड़ा सा ये है कि इसमें जितनी

0: चीज़ें भी सेल की गई हैं, एक तो मैंगो सबसे पहले और बाकी खाने पीने की चीज़ें, उसमें कीमतें उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग ज़ाहिर है अपने बच्चों और फैमिली के साथ गए हैं। एक तो ये बताएं इसमें ये क्या, किस तरह इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है, और दूसरा ये बताएं कि ये जो करते हैं प्रोग्राम जितने भी ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें क्या कोई यहाँ की कम्यून या जिस कम्यून के अंडर ये प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें भी, वो भी उनका भी कुछ तावन होता है इन प्रोग्राम में?
1: आप देखें, पहली बात तो ये है कि हर प्रोग्राम की एक कास्ट होती है,
0: ठीक है,
1: और पाकिस्तान सोसाइटी ने ये पहला प्रोग्राम नहीं किया।
0: ठीक है,
1: पाकिस्तान सोसाइटी वाहद तंजीम है जो पिछले 40 साल से
0: जी जी
1: प्रोग्राम करती आ रही है,
0: जी
1: यानी कि टाउन हॉल के अंदर आपने देखा 6-7 हज़ार लोगों की गैदरिंग, और पिछले साल हमने किया, आप भी थे, यानी कि वो आमा में हुआ,
0: जी
1: और परसों का प्रोग्राम आपके सामने है।
0: जी
1: हम एक प्लान बनाते हैं
0: ठीक
1: इन
0: है,
1: टाइम, फिर हम उसमें यानी कि उसका बजट बनाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि किन लोगों को हमें बुलाना चाहिए और लोगों के लिए क्या, हम एक लोगों को सिर्फ बुला ही नहीं देना, उनको इंटरटेन करना, उनको यानी कि इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो पूरा करना, वो कैसे हो सकता। इस प्रोग्राम का जो परसों की अगर मैं बात करूं पीछे छोड़ दें,
0: जी
1: तो इसका जो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 90,000
0: जी
1: 90,000 90,000 करोड़ सिर्फ इस लुखेल का किराया था
0: ठीक है
1: शेख साहब,
0: जी,
1: और उसके अलावा जो है यानी कि जो ये म्यूजिक था, साउंड सिस्टम, ये सारी चीजें
0: जी,
1: मिला
0: बाकी
1: करके
0: सारी जी
1: इस हालात में भी, अभी तो जो सच्ची बात है हमारा 50,000 करोड़ का बजट था खाना देने का, वो हमने देने था, हम तो पूरा है, वो तो तैयारी हमने तो जिसको ऑर्डर भी कर दिया है। लेकिन अब आते हैं जो स्टॉल लगे हैं, हमें उन्होंने कहा कि जी, और हमने ये देखा है, आपने सही इसको इस चीज को पकड़ा है या
0: जी
1: आपके एनालिसिस जो है कि इस साल मैंने पहले अर्ज की कि 8-9 जगह ये प्रोग्राम हुए, और
0: प्रोग्राम
1: सभी में मांगों से लेकर कुल्फियों तक, यानी कि ये जो परसों प्रोग्राम हुआ इसमें 20 स्टॉल थे, कुछ जगह पर इससे भी ज़्यादा थे, यानी कि खाने के प्रोग्राम थे। हमने इस चीज़ को फिर यानी कि हमें चेंज करना पड़ा कि अगर उन लोगों ने ये कहा कि जी अगर आप खाना दोगे तो फिर हमारी तो कुछ चीज़ नहीं लेगा।
0: नहीं लेगा।
1: अच्छा, अब जो ये एक नया कल्चर डेवलप हुआ पिछले तकरीबन 2 साल से,
0: ठीक है,
1: पहले भी जो ये प्रोग्राम होता रहा वेलबी में,
0: जी
1: मैं उन लोगों में से हूँ, नॉर्वे एवरी ईयर जाकर अपने बच्चों के साथ मनाता रहा, वो चीज़ मैं डेनमार्क लाना चाहता था, हम लाए, ये चौधरी अयूब, शफीक खान, मैं, ये हमारे पीटीआई के लड़के,
0: ठीक है,
1: ये साकब और साकी
0: जी,
1: आतिफ वगैरह सब हमने मिलकर यानी कि वहाँ वो शुरू किया था।
0: ठीक है,
1: उसमें अब वो क्यों नहीं हुआ, जो मेरे ख्याल में वो ये है कि उसमें यानी कि बजट जो है ना वो बैलेंस नहीं रहा।
0: ठीक
1: मुझे
0: है,
1: तो पहले 2 का पता है कि वो लॉस में थे हम, उसके बाद वो कुछ चीज़ें चेंज हुई, हम उससे निकल गए, तो वो बच्चे जिस तरह भी करते थे वो आपने देखा टिकट्स वगैरह, वो हर कोई अपना अपना प्लान करता, मैं इस तरफ रहता हूँ। अब ये जो हमारा प्रोग्राम इस दफ़ा आपने देखा, हमने तो पहली दफ़ा ये स्टॉल वगैरह जो है ना वो
0: किए,
1: किए,
0: ठीक है,
1: ये एक मांग है शेख साहब,
0: डिमांड है
1: ये डिमांड है लोगों की।
0: अच्छा,
1: डिमांड क्या है कि लोग घर से बाहर आना चाहते हैं,
0: ठीक है,
1: वो कोई इंटरटेनमेंट जो है ना वो देखना चाहते हैं। अब आप देखो कि ये कितना अच्छा माहौल है कि कोई अपने वहाँ से बर्गर लेकर, कोई टिक्के लेकर, कोई कुल्फियाँ लेकर, यानी कि टेबल जो आपके सामने हमने यानी कि 750-750 लोगों के लिए टेबल और कुर्सियाँ जो दी, वो भी पूरी नहीं, मतलब हुई, लोगों को कमी हुई, खैर लोग आते जाते भी रहे। दूसरा जो हिस्सा था जो हमारा मेन मकसद होता है कि हमने आप लोगों से, आप सब से जो, और मीडिया ने बड़ा साथ दिया है, आपने स्पेशली जो है ना आपने बड़ा सारे वो उसको यानी कि बड़ा तामन आपका रहा। फिर जो दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि जो पाकिस्तान सोसाइटी का असल एम है, मकसद है कि हम अपने लोगों को यानी कि अपने जो जो ज़रूरियात हैं हमारे, देखें हमारे प्रॉब्लम जो मैंने पहले कहा कि चीज़ें चेंज हो गई हैं,
0: जी,
1: अम्बेसडर साहब उधर थे, उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की, वो बड़े अवामी बंदे हैं, उन्होंने जो हमारे मसाइल हैं चौधरी बलैत ने जो चीज़ उठाई, आपको पता सभी जानते हैं नादरा का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ
0: जी जी,
1: इसी तरह कैटेगरी 5 है, यहाँ हमारे दो मेहमान दो लोग जो हैं वो नहीं आए जिन्होंने कहा था वो आएंगे।
0: अच्छा,
1: एक जो डेनिश एम्बेसडर है पाकिस्तान में
0: जी जी,
1: वो माया
0: जी जी, उधर

0: हैं जिन्होंने, हम आम बेचने नहीं आए थे, हम लोगों को कायल करने आए थे, हमेशा जो साथ देते हैं
1: जी,
0: उनकी मसले मिसाल हल करने के लिए एक बेहतर वे जो है ना वो उसकी।
1: अच्छा मियाँ साहब, ये आपने जो जिक्र किया कि ये दो तीन जो मिसाइल PIA का, नादरा का, और दूसरा तीसरा जो जिक्र आपने किया, अच्छा ये मसाइल ऐसे हैं कि ये काफ़ी अरसे से हमारे सामने हैं, इसका हल आपकी नज़र में क्या हो सकता है कि ये सिर्फ अम्बेसी, ज़ाहिर है वो तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम अम्बेसी को फोर्स तो कर सकते हैं, पूरी कम्युनिटी अगर महीने में एक आध दिन जाके मीटिंग करें अम्बेसडर साहब से और उनको कायल करें कि पाकिस्तान को ये बावर करवाएं कि हमें ये वाकई मसाइल हैं, ख़ासतौर पर PIA का और नादरा का, क्योंकि अगर अम्बेसी के तवसत से ये सारी कम्युनिटी का मैसेज पाकिस्तान गवर्नमेंट को पहुँचेगा तो मैं समझता हूँ कि ये मसला या मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन ये हम सिर्फ कह देते हैं, जैसे जो विलायत साहब ने बड़ा तफसील के साथ कहा, आपने भी जिक्र किया या बाकी प्रोग्राम में भी जिक्र होता रहता है, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं अभी तक सामने आ सका।
0: पहली बात तो ये है, जफर के चौधरी विलायत ऐसे बात कर नहीं देते
1: जी।
0: अभी वो पाकिस्तान 3.5 माह रहकर आए हैं
1: जी, जी।
0: मुझे, क्योंकि मैं भी उनका साथी हूँ, सारी टीम हमारी बाकी साथी जो है, मुझे उनकी वहाँ सारी एक्टिविटीज का पता है
1: जी।
0: वो ऐसे ऐसे इस दफा
1: जी
0: ऐसे ऐसे जिम्मेदार लोगों से मिलकर आए हैं,
1: ठीक है।
0: आपको पता कि पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत है, साथ में एक फौज का बहुत इस वक्त है
1: जी, जी,
0: तो वो उन लोगों से मिलकर आए हैं जिनके साथ नादरा की और PIA की बातें
1: अच्छा।
0: बड़ी आगे तक। अब PIA का सिर्फ एक मसला है, यानी कि मेरी वर्कशॉप है, अगर मैं वहाँ, मेरे पास मकैनिक नहीं है तो फिर वो जो 9 लिफ्टें और वो हजार तो नहीं काम करें,
1: कैसे चलते।
0: PIA के पास जहाज नहीं है, मैं अभी रास्ते में, मेरा बेटा उमर जो है उस, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर काम करता रहा कतर में पहले, था यही बात हो रही थी, PIA ने कुछ जहाज ऑलरेडी बड़ी फास्ट क्या कहते हैं तरीके से कुछ ले रहे हैं
1: जी, जी।
0: और अगले 3-4 साल में तो चीजें बहुत बेहतर होने जा रही इंशाल्लाह, लेकिन PIA का मसला जो है ना कोई नहीं हल कर सकता PIA के सिवा, कि PIA के पास जहाज हो, अब प्राइवेट हो चुके हैं तो होंगे। मैं यहाँ एक बात आपसे करना चाहता हूँ जो आपने नहीं की
1: जी।
0: देखें हमारा जो है ना इस वक्त सबसे बड़ा मसला, जो पहले बात भी हुई है इंटीग्रेशन में, कैटेगरी 5 में ये चीजें आती
1: है,
0: इस वक्त जो है हमारा इंटीग्रेशन का मिनिस्टर जो है मॉर्टन पेस को
1: जी,
0: मैं पर्सनली, ये नहीं कि जी मुनीर ऐसे, मेरा बाई चांस यार इसी जगह से टैक्सी चलाते हुए इनका दफ्तर होता था ये वेलबी में छोप होर्ड में, तो मैं उसके साथ जो है यानी कि ड्राइव उसे किया, दोस्त बन गए, मैं उसे पिछले 18-20 साल से बहुत उसे हर तरह उठता बैठता हूँ। अब ये चीजें आपको पता, वो इतनी एंटी फॉरनर कह रहा और हमारी कैटेगरी 5 जो है वो यानी कि इतना बड़ा बिला वजह, और उसे और अम्बेसडर साहब ने बड़ा उस पर वर्क किया है शुएब सरवर ने, अब वो हमें कहते हैं कि यार जो पब्लिक की तरफ से प्रेशर आना चाहिए, और उसमें ये है जफर कि ये जो हमारे काउंसलर साहबान है इनमें से कोई भी जो है यानी कि हर एक एक पार्टी के साथ मुंसलिक है, वाइस बोमेस्ता भी बने हैं, बाकी भी यानी कि हर सोशल डेमोक्रेट हैं, रेडिकल हैं, दो ही है ना ये जो मेन है, और इनके वो जो नुमाइंदे हैं और वो यही पावर में है, इनको अपनी पार्टी के अंदर अपने डैनिश कुलीग जो हैं, चीजें इस तरह चलती हैं, उन्हें कायल करना होगा, उन्हें प्रमोट करना होगा, उन्हें तरीकाकार बताना होगा या पूछना होगा, तो ये कैटेगरी 5 जो है इतना जुल्म है हमारे लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, कि हमें अफगानी और सोमालियन और उन लोगों की तरह इन्होंने बना रखा जो हम नहीं है। हम एक टॉप गुड अच्छे शहरियों में है, हमने डिलीवर किया है, हमारे बच्चों ने डिलीवर किया और कर रहे हैं, सो हमें इनको ये इस कैटेगरी 5 से निकालना होगा। तो ये
1: लेकिन जी ये सब इसमें फिर किन तंजीमात की जिम्मेदारी है? पाकिस्तान सोसाइटी, एक मैं समझता हूँ कि फादर ऑफ द सोसाइटीज है यहाँ डेनमार्क में, वो अगर लीड करें, उनके पीछे जितनी भी तंजीमात हैं, मजहबी, सियासी, समाजी, जितनी भी सकाफती, वो सारी इनके पीछे लगें, और जैसा आपने फरमाया भी कि ये प्रेशर हमें बढ़ाना चाहिए अम्बेसी के तवसत के या अम्बेसी के साथ मिलकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, तब ये मसला हल होगा। तो ये हम क्यों नहीं कर सकते, एक जगह ओपन इन्विटेशन दें ना ये सारी तंजीमात, उसमें आए लोग, चाय एक आप चाय का कप बस दे
0: दें। जफर, सबसे पहले मैंने जो बात की है कि ये कौंसलर साहबान जो है ना अपनी पार्टी के अंदर, चाहे वो सोशल डेमोक्रेट है, राडिकल है या तो कोई दूसरी है
1: जी,
0: उससे इस चीज़ को, इस मसले को उठाएं अपने

0: कुलीग जो डैनिश है उन्हें कायल करें, उन्हें बताएं, और फिर इसी तरह जिधर हमारी ज़रूरत हो, हम देखें पाकिस्तान सोसाइटी तो एक तंजीम है, हम तो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों के मसाइल हम जानते हैं, हम उनको जागर करें करते रहते हैं, फिर हम जिधर जिसकी ज़रूरत होगी उसका साथ देंगे। लेकिन असल में ये जो जो नुमाइंदे बनकर गए हैं, जिन्हें हमने भेजा है अपनी वोटों के से, जो उन अदारों में बैठे हैं, चाहे वो लो साइड पर आए हैं जब ये यानी कि कम्यून में बैठे हैं, तो इन्हें डिलीवर करना होगा। लेकिन इनके अपने जो पर्सनली बस शोबाजियाँ और काम जो उनसे ये हटते हैं। जी
1: मियाँ जी, बात कर रहे हैं हम अपने मसाइल की। यकीन करें जो बेगैरती हमारे साथ पाकिस्तान एयरपोर्ट पे की जाती है ना, जब हम जाते हैं कहते हैं ना ओवरसीज हमारी शाहराग है, वो एक वो कश्मीर भी हमारी शाहराग थी, वो भी काट रही, खैर हमने उस पर कभी बात करेंगे, लेकिन हमें कहते हैं कि जी ये ज़र मुबादला भेजते हैं, हमारे एम्बेसडर हैं, ये है वो है। जो सलूक हमारे साथ किया जाता है एयरपोर्ट पे, हमारे बैग आते हैं उनको खोल के उनमें से चीज़ें चोरी कर लेते हैं, हमारे साथ जो नारवा सलूक किया जाता है, रिश्वतें ली जाती हैं, आज तक तो हम ये अपना मसला हल नहीं करवा सके। ग्लोबल POC तो फलानी फलानी ओवरसीज जो कमेटियां बनी हुई हैं, वो फलाना हेड है, फलाना चौधरी है, फलाना भट्ट है, वो यार यकीन करें आज तक हम अपने वो पिछवाड़े पे लितर खाने से जो है नहीं बच सके, इतना जलील हमें वो एयरपोर्ट पे करते हैं। कौन से मसाइल? अभी तो मैं आपको एक नया मसला बताता हूँ जो सुनने में आया है, जिनके पास डेनिश पासपोर्ट है ना और ओवरसीज कार्ड नहीं है, जब उन्होंने वीजा लगवाना है ना पाकिस्तान का, तो उन्हें कहा जाता है कि जी आप पाकिस्तान से स्पॉन्सर लेटर मंगवाएं कि आप अपनी फैमिली को मिलने आ रहे हैं। अब एक पाकिस्तानी जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, अब उसने जब वीजा लेना है मेरे जैसे ने मिसाल के तौर पर, तो उसको पाकिस्तान से अपनी फैमिली के जो है ना वो ओवरसीज वो स्पॉन्सर लेटर मंगवाना पड़ेगा। एक आखिरी इस पे सवाल जो है मियां साहब, पाकिस्तान बनाने में जो है ना हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे दादा नाना जो थे, उनकी जो जनरेशन थी उन्होंने कुर्बानियां दी थी, हमारी बहनों ने माओं ने कुर्बानियां दी थी, ठीक है। आज जब भी हम 14 अगस्त का प्रोग्राम करते हैं, कायद आजम जिंदाबाद या इलामा इकबाल जिंदाबाद या उनका जिक्र नहीं होता। हम जो आज आर्मी जिंदाबाद, आर्मी तो उस वक्त थी ही नहीं, हमने पता नहीं आर्मी को उसमें किधर से घुसेड़ लिया, आ रहा अपने 14 अगस्त के प्रोग्राम में। और ये पाकिस्तान में भी देख लें जनाब, आर्मी साहब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं वो सूट बूट पहन के इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह पाकिस्तान जो है इन्होंने बना के दिया था हमें।
0: देखें रजा, जो पहली बात जो आपने की ना, अभी मुझे पता कि टाइम इज गोइंग, बात यह है कि मैं खुद उस फैमिली से तलक रखता हूँ जो इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आई है।
2: जी।
0: मैंने अपने दादा से, मैंने परसों भी ये कहा था कि अपने बुजुर्गों से पूछे कि ये पाकिस्तान कैसे बना। मैंने आपके अपने दादा से जो बातें सुनी, मेरे वालिद 13 साल के थे जब पाकिस्तान से इधर आए, मैंने रात फिल्म देखी है एक इंडियन, वो क्या नाम है जीत, वो क्या जो सरगुद अपनी बीवी लेने जाता है, वो मैंने रात इंडियन फिल्म मैं नहीं देखता, लेकिन मैं क्योंकि 14 अगस्त के हवाले से कुछ हिस्ट्री जानना चाहता था। खैर इस पर फिर बात होगी। देखिए रजा, पाकिस्तान जितनी जिस कुर्बानियों के साथ बना है, वो पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने जितना सफ़र किया, जितना नुकसान किया, शहादतें हुई, वो हमें उसे नहीं भूलना। अगर कोई भूलता है तो वो उस हकायक से ज्यादती कर रहा है। अच्छा, अब मैं जल्दी में ये बता दूं कि मैं आपको ये मैसेज यहाँ देकर जाना चाहता हूँ कि अगर हमारे किसी भाई बहन के साथ सफारतखाना कोपनहेगन की तरफ से, देखें ई वीज़ा है ना
2: जी,
0: और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन लोगों को कि ये बड़े अच्छे सिस्टम में चीज़ें चल रही हैं। मुझे भी कभी कभी किसी की अगर एमरजेंसी हो तो वो फ़ोन आते हैं, लेकिन अगर किसी जगह किसी फर्देवाद के साथ कोई ज्यादती हो, कोई मसला मसाल जो मैं नहीं जानता किसी को हुआ, मैं तो जानता हूँ कि बड़ा अच्छा बैलेंस है, किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं ये कोई कर ही नहीं सकता रजा, जो आप बात कर रहे हैं कि स्पॉन्सर लेटर मंगवाओ। देखें जो हाँ कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान, सबसे पहले कुछ सिक्योरिटी मामले हैं, उसमें कुछ अफगानी हो सकते हैं, कुछ और लोग हो सकते हैं, जो आपको पता सारी चीज़ें जिस तरह चल रही हैं, अगर कोई उठकर मथुरा के पाकिस्तान जाना चाहे, और आपको पता होना चाहिए कि लोग पाकिस्तान वन और अदर वे गए हैं, जिन्होंने वहाँ जाकर मसाइल पैदा किए हैं, दहशतगर्दी की है, उनको तो फिर हमारी फौज ही निपटती है ना उन लोगों से, तो हमें अपने फौज पर फख्र है। इसमें मैं तो मेरी तो

0: ये सोच है, लेकिन फौज ही सारा निजाम को कैचर करके बैठ जाए, मैं वो मनीर नहीं हूं
1: वो
0: कि उनको यस को।
2: मियां साहब आप कहते हैं कि वहां पाकिस्तान अगर कोई होता है तो वहां पे पुलिस भी है और भी इदारे हैं वहां पे, जरूरी तो नहीं है कि हर काम जो है वो आपकी आर्मी ने ही करना है।
0: देखें इस पर मेरे ख्याल में किसी दिन फिर मैं तो आई लव मतलब कि ये सारी चीज़ें जब आप उजागर करते हो और ये होनी चाहिए जो हम भूल जाते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सियासी तौर पर जो मिसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ सियासत जिन्होंने की आया उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और बदमाशी की, या उन्होंने एज ए सियासतदान जिस सियासतदान को मैं और आप जानते हैं इस मुल्क के अंदर जिसका नाम सिस्टम डेनमार्क है, या वो सियासत करते हैं। और फिर सवाल यह निशान बनता है कि फौज जो कुछ करने पर मजबूर हो जाती है या कर रही है वो क्यों।
2: मियां साहब बहुत लंबी बहस है, इसको किसी दिन और करेंगे कि ये क्यों आर्मी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आप भी तो बहुत सी पार्टियों के जो है वो करता धरता डेनमार्क में रहे हैं, तो मियां साहब जब हम आपके डायरेक्ट पाकिस्तान तलक होते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं मॉडर्न पुलिसको को आप जानते हैं, इसी तरह जो है हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और किस किस को नहीं वहाँ पे जो है वो जानते हैं। यहाँ तक के कुछ लोग कहते हैं कि जी हम जो आसम मनीर साहब से जो है वो उनके साथ क्लास फेलो भी रहे हैं, तो जब हमारे तलक इतने अच्छे हैं तो हम अपने मसाइल हल करवाने में इतने पीछे क्यों हैं।
0: रजा मैं आप छोटे थे और आपके वालिद साहब अगेन उनका नाम आ रहा है, मैं मुस्लिम लीग जो का प्लेटफॉर्म यहाँ लगाने वाला मैं हूँ, बाकी कुछ लोग जो हैं जिनके वालिद साहब बड़े मतलब है कि वो बन गए वो छोड़ें उस चीज़ को, वो कहने की बातें हैं, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म इस और फॉर पाकिस्तान, मुझे कोई अपना जाति इसमें वो नहीं था। पीटीआई का प्लेटफॉर्म आपको पता कि मेरे ऑफिस से और उन बच्चों के साथ मिलकर किया, मैं इस रिज़ल्ट तक पहुंचा हूं और मैं समझता हूं कि हमने नुकसान किया। ये पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का यहां जो ना होना ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमें पाकिस्तानी होना है और पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा, और ये बिल्कुल आप हंस भी रहे हो, ये वो मुनीर कह रहा है जिसने यानी कि सारी ज़िंदगी और तलक भी हैं और आज भी हैं, किसी से वो नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मेरे लिए बड़ी ऑनर है, लेकिन हमें अपने आप को डिवाइड करके अपने आप को मुस्लिम लीग नूम तीन तीन ग्रुप, पीटीआई के तीन तीन ग्रुप, पीपल्स पार्टी चले वो बेचारा एक ही हल्का सा ग्रुप, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है इनको इस नज़र में देख कर हम अपने आप को डिवाइड करके तो फिर तो कुछ भी नहीं अचीव करेंगे।
1: अच्छा प्रोग्राम को मजद नाज़रीन वाइंड अप करते हुए मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि मियां मनीर साहब माशाल्लाह सीनियर सिटीज़न भी अभी कह लें या तजर्बाकार भी कह लें, इसी तरह बाकी जो हमारे यहाँ जो अहबाब हैं शख्सियात हैं जिनमें से विलायत साहब और बाकी जो मैं नाम नहीं अभी सबका टाइम नहीं है, इनको सबसे पहले मशले राह बनना चाहिए हमारी दूसरी या तीसरी या चौथी जनरेशन के लिए। अगर ये लोग पॉजिटिवली थिंकिंग और गुफ्तार और किरदार में पॉजिटिव होंगे तो लाजमी बात है उनके बच्चों के बच्चे वो भी उनको फॉलो करेंगे और फिर इस तरह हमारे जितने भी मसाइल हैं वो हल होने शुरू हो जाएंगे। बहरहाल आज के प्रोग्राम में मज़र नाज़रीन जितना जो कुछ भी बातें हुई वो हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, अगर आप उनसे इत्तेफाक करते हैं तो इत्तेफाक कर लें, अगर नहीं करते तो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही होता है कि कोई भी ऐसी बात जो हम सब के लिए इंफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर बेहतर हो उसको अगर हम फॉलो कर लें तो वो हम सब के लिए बेहतर होती है। तो आज के लिए इतना ही, मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी की वजह से ये नहीं हो सका, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपको
0: रेडियो हम वतन जी जो पाकिस्तानियों की सबसे पुरानी और एक लंबे अरसे से इसके साथ जो यादें हैं अल्लाह ताला इसे कायम दायम रखे, मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ फिर आकर और मैं आपका शेख साहब और रजा का बहुत बहुत मशकूर हूँ आपने मुझे मौका दिया। ये मेरा अपना रेडियो है और जो भी दरमियान में चीज़ें रहीं अपनी अपनी मसरूफियात पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को, जो कुछ भी अगर मैं कुछ कर सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए तो मैं हाजिर हूँ और जिस तरह भी वो तो इंशाल्लाह हमें एक साथ चलना है और अपने अपनी इन सारी चीज़ों को जब हम एक दूसरे के नज़दीक होकर अच्छी सोच के अंदर इन चीज़ों को तब्दील करना चाहेंगे जो ठीक नहीं है तो होंगी इंशाल्लाह,
1: इंशाल्लाह
0: तो पाकिस्तान जिंदाबाद
1: जी,
0: पाकिस्तान पाइंदाबाद।
1: थैंक यू सो मच, अल्लाह
0: हाफिज़।
3: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल radio@hamwatan.org।